0: श्रोते हो नमस्कार, मी प्राध्यापक योगेश सोमण, आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे व्यस्त रेल स्टेशन या बस अड्डे को देखा है जहां से लगातार गाड़ियां छूटती रहती हैं? लोग बड़े बड़े बक्से, भारी भरकम बोरियां और न जाने कितना सामान अपने सिर और कंधों पर लादकर पसीने से तरबतर उन गाड़ियों में सवार हो रहे होते हैं। कोई पीछे छूटने वाला सामान के लिए परेशान है, तो कोई और ज़्यादा बोझ उठाने की होड़ में लगा है। लेकिन अगर आप उस स्टेशन के उस पार के छोर को देखें जहाँ वे गाड़ियाँ जा रही हैं, तो वहाँ से आज तक कोई भी मुसाफिर यह बताने वापस नहीं आया कि उस मंजिल का सच क्या है, वहाँ क्या नियम चलते हैं और यह सारा भारी सामान वहाँ किसी काम भी आता है या नहीं। हमारी यह जो पृथ्वी और मानव जीवन है, यह भी ठीक वैसा ही एक तरफा स्टेशन है। हम सब यहाँ से एक अनजान यात्रा पर लगातार भेजे जा रहे हैं, लेकिन अपनी नासमझी में तृष्णाओं का इतना भारी बोझ लाद लेते हैं कि चलना भी दुभर हो जाता है। कबीर साहब आज हमें इसी अंतिम महायात्रा की हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। उठ थे कोई न आवई, जासो बुझा धाई, इत थे सबे पठाइए, भार लदाई लदाई। उठ थे कोई न आवई, जासो बुझो धाई,

जाएं। श्रोताओं, कबीर साहब मृत्यु और जीवन के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, उठते कोई न आवई उस पार से, यानी मृत्यु के उस पार के अज्ञात लोक से आज तक कोई न आवई, यानी कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। जासो बूझो धाई, जिसके पास मैं धाई यानी दौड़ कर जाऊं और बूझो यानी पूछ सकूं कि भाई उस पार का मार्ग कैसा है, वहां की हकीकत क्या है और उस पार क्या चलता है और इसे किनारे की विडंबना क्या है। अगली पंक्ति में कबीर इसका यथार्थवादी चित्रण करते हैं। इतने

0: थे सबे पठाई, इस दुनिया से इस पृथ्वी से हर एक जीव को काल द्वारा एक एक करके पठाई यानी भेजा जा रहा है, विदा किया जा रहा है भार लदाई लदाई। और अफसोस की बात यह है कि हर कोई यहाँ से अपने सिर पर अहंकार, ईर्ष्या, मोह, संपत्ति और विषय वासनाओं का भारी भार यानी पहाड़ जैसा बोझ लदाई लदाई यानी लाद लाद कर जा रहा है। किसी को यह होश ही नहीं है कि वह सारा बोझ यही छूट जाएगा और केवल कर्मों की गठर ही साथ जाएगी। यह दोहा मृत्युबोध और अपरिग्रह का महासूत्र है। कंठोपनिषद में जब नचिकेता यमराज से मृत्यु के पार का रहस्य पूछते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि यह मार्ग अत्यंत गूढ़ है और सांसारिक चकाचौंध में अंधा मनुष्य इसे नहीं जान पाता। भार लदाई लदाई, हमारी उन मानसिक आसक्तियों और संचय की प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसे हम जीवन भर ढोते रहते हैं। कबीर समझा रहे हैं कि जब उस पार का कोई भूगोल हमें ज्ञात नहीं है तो फिर इस नश्वर संसार के व्यर्थ के बोझ को सिर पर ढोने की क्या जरूरत है। जो मुसाफिर हल्का होता है, जिसकी चेतना वासना मुक्त होती हैं, वही उस अज्ञात यात्रा को निर्भय होकर पार कर पाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा रुक कर अपने सिर और दिल पर रखे बोझ को तौल कर देखिए। हमने अपने मन में कितनी नफरतें, कितने गिले शिकवे, कितनी जायदाद की चिंताएं और दूसरों को नीचा दिखाने का कितना भारी बोझ लाद रखा है। हम भूल जाते हैं कि यहाँ से जाना बिल्कुल तय है, उस पार कोई सामान साथ नहीं ले जाता। आज कोशिश कीजिए इस भारी बोझ को यहीं नीचे उतारने की। अपने मन को हल्का कीजिए, क्षमा कीजिए और प्रेम बांटिए। अपने जीवन के खाली झोली को उस अविनाशी राम नाम के अमृत से भरिए जो उस पार की यात्रा में आपका सच्चा संगी और सहारा बनता है। जब आप भीतर के बिल्कुल भारहीन और निलप्त हो जाएंगे तो मृत्यु का भय भी आपके लिए परम मुक्ति का द्वार बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज एट टचिंग।
2: भाग 65 बात तथागता। विपश्यना ही अशी ज्याचा कर्मकांडाशी संबंध नाही, जिचा अंधश्रद्धेशी संबंध नाही, तेव्हा चुकीची विपश्यना करणे हा अभ्यासकाचा दोष। या दोषी नमुन्यामुळे विपश्यनेला दोष कसा? प्रज्ञावंत असलेला साधक संशोधक असतो विवेकी, मनात येतात विचार त्याच्या, नेहमीच लोककल्याणाचे, योग्य मार्ग दाखवण्याचे, लोकांच्या उत्कर्षाचे, लोकांना सुसंस्कृत बनवण्याचे। त्यामुळे पुन्हा नव्याने प्रज्ञा संशोधकाचे शी अधिकाधिक पुष्ट होत जाते आणि तो अष्टशिलाकडे मार्गक्रमण करू लागतो। तो झुगारतो तैकलादू ऐशो आराम आणि बेगडीपणाने लखलकणारे उथळ आयुष्य। तो त्यागतो उच्च शयनगृह आणि तत्सम व्यवस्था। तो होऊ लागतो निसर्गाशी रममान अतिशय साधेपणाने। निर्वावासा वाटत नाही त्याला श्रीमंतीचा तकलादू बडेजाव, किंवा चमचमीत अन्न पदार्थ मोहू शकत नाही त्याला पदार्थाच्या उथळ अस्तित्वाने। आपल्या आचरणातील आदर्शाने तो आखून देतो जनसमुदायासाठी विवेकशील जग।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हमने जहां बात की लाइफ स्किल्स की, यानी कि जीवन की वो कौशल, वो कलाएं जो शायद हम नहीं जान पाए थे, और तभी जीवन जो था वो ऐसा नीरस लग रहा था, वैक्यूम लगता था, खाली खाली लगता था, दुख दर्द हमारे जीवन का

0: मैं खुद क्रिएट करता हूँ, सिचुएशन कोई भी हो। हमने कई तरह के थॉट्स के बारे में बात की, किस तरह के थॉट्स हैं, 7 types of thoughts जो हम क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पावरफुल थे टॉक्सिक थॉट्स, यानी कि पॉइजनस थॉट्स, वो थॉट्स जो मुझे साफ नज़र आते हैं। कई और तरह के थॉट्स थे, उन पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा को एसिस्ट शिवानी, दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, नेगेटिव थॉट्स आपने कहा, टॉक्सिक थॉट्स, और उसके बाद बात की थी नेगेटिव थॉट्स की। टॉक्सिक थॉट्स अगर हम एक बार और उसको क्लियर कर लें कि वो जो बहुत पावरफुल होते हैं, चाहे वो गुस्से के थे, नफरत के थे, कई बार देखा जाए तो हर्ट के थे, और थोड़ा सा जो हमें दिख रहे थे एक्सप्रेशंस, उसके बाद नेगेटिव में आपने कहा था इरिटेशन भी शामिल है, डर, एंग्जाइटी, घबराहट, और ना सिर्फ ये कि वो दूसरा कुछ गलत कर रहा है बल्कि ये सारी चीज़ें भी उनमें शामिल हो रही थी। डॉक्टर पटेल, लेकिन कहा जाता है जिन्हें हम नेगेटिव थॉट्स कह रहे हैं अभी, कि थोड़ी सी घबराहट, कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ यू नो एग्ज़ाम है, उससे पहले की थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा स्ट्रेस, वो ज़रूरी है, नहीं तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती।
1: लेकिन फिर भी वह नेगेटिव थॉट अगर है तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट है। एक्चुअली जो हम नाम देते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, उसको घबराहट नहीं कहो, एंग्जाइटी नहीं कहो, उसे मोटिवेशन कहो। एक डोरोथॉन्स ग्राफ माना गया है जो कहता है कि जब व्यक्ति में मोटिवेशन है, प्रेरणा है, तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है, लेकिन जब वो नेगेटिविटी का रूप ले लेता है तो उसका परफॉर्मेंस भी नीचे आ जाता है। जैसे थोड़ा सा उससे अगर कंसर्न है, एग्जाम के बारे में कंसर्न है, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन अगर वो डर का रूप ले ले तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए कि बल एग्जाम है तो भी पॉजिटिव विचार आए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है। कहते हैं आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन आई क्यू, तो मैं कर सकता हूँ, वह थॉट होना चाहिए, तब परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर एंग्जाइटी का रूप ले लिया तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव थॉट्स ही जरूरी।
0: हाउ विल आई नो वेदर माय कंसर्न और माय एंग्जाइटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैसे पता चल पाएगा?
2: डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर फीलिंग।
1: या
2: हाउ आर यू फीलिंग, इमीडिएटली पता चलता है कि अगर वो नेगेटिव है, डाउट वाली है, फियर ऑफ फेलियर की है, फियर ऑफ नॉट एक्सेप्टेंस,
0: वो जो वो स्टमक में कुछ होना शुरू हो जाता है,
1: ये दिमाग में भी होगा।
2: ये तो फिजिकल लेवल पर है, बट अदरवाइज इमोशनल लेवल पर भी तो फीलिंग आ जाती है ना। यू कैन मेक आउट वेदर यू आर फीलिंग नाइस और यू आर नॉट फीलिंग वेरी नाइस, वो पता चल जाएगा।
0: कॉन्फिडेंट अगर एग्जाम में या परफॉर्मेंस से पहले मन अच्छा है, मजा आने वाला है या मजा आ रहा है, देन इट इज लाइक पॉजिटिव, और अगर लग रहा है कि नहीं मैं से नहीं हो पा रहा, घबराहट है या हो पाएगा या नहीं, तब नेगेटिव।
2: एंड दूसरा भी होगा कि अगर पॉजिटिव है, दे आर स्लोअर द थॉट्स, दे आर फ्यूअर इन नंबर एंड दे आर स्लोअर, तो आपको यहाँ पर काफ़ी साइलेंस या स्टेबिलिटी जैसा लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो बहुत फास्ट चलते हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको वो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा, सर भारी जैसी फीलिंग आएगी, आप थिंकिंग टू मच, पता चलेगा। रिलैक्स्ड फील करेंगे इफ़ इट्स पॉजिटिव, डिस्टर्ब्ड फील करेंगे इफ इट्स नेगेटिव, तुरंत पता चल जाता है। जस्ट उस समय परिस्थिति को ना ब्लेम करें, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि दिस इज व्हाट आई एम क्रिएटिंग, और अगर मैं नेगेटिव क्रिएट कर रहा हूँ उसका मेरी बॉडी पर भी असर आएगा, उसका फिर मेरी परफॉर्मेंस पर असर आएगा, सो लेट मी सिट बैक, चेंज माई थॉट्स, चेंज, क्योंकि थॉट क्या होगी, जैसे आपने कहा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जाम है, इट्स नॉर्मली फियर ऑफ फेलियर कि अगर नहीं हुआ ठीक तो, अगर पब्लिक को या जो वॉच कर रहे हैं उनको नहीं पसंद आया तो,
0: बहुत लोग डिपेंड कर रहे हैं इस पे, यू नो, बहुत सारी चीजें होती हैं,
2: तो ये सारी तो फियर ऑफ फेलियर की है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो ये सारी थॉट्स पॉजिटिव कैसे हो सकती हैं? एंड क्योंकि फिर मैंने परफॉर्मेंस करने से पहले जो भी, इवन वाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आज हमें इंटरव्यू पे जाना है, प्रेजेंटेशन करनी है कॉलेज में, कोलीग्स के सामने, क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन करनी है, ये सारी थॉट्स अगर नेगेटिव होंगी तो मैं ऑलरेडी यू नो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एक्चुअली मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एंड फिर उसका मेरी बॉडी लैंग्वेज पर, मेरे फेस पर, एंड फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइब्रेशंस जो सामने जाएंगे, अगर मैं पहले ही आपको ये वाइब्रेशंस भेजूँ, आप मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको नहीं अच्छा लगने वाला है जो मैं करने वाली हूँ आज, ऑलरेडी आई एम सेंडिंग दैट एनर्जी, एंड ऑलरेडी आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि आज नहीं पसंद आने वाला है जो मैं करूँगी, तो एज आई थिंक सो विल हैपन, वो हो जाता है फिर।
0: तो डॉक्टर पटेल, ये तो रही बात नेगेटिव थॉट्स की, हमने और कई तरह के थॉट्स की बात की थी, वेस्ट थॉट्स थे, उनमें क्या क्या शामिल है?
1: वेस्ट थॉट जो है वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम वेस्टर है, कई बार आप बस में जा रहे हो, ट्रेन

0: में जा रहे हो और एडवर्टाइजमेंट को पढ़ रहे हो, तो इट इज योर वेस्ट ऑफ टाइम। भले वो कंपनी को फायदा होगा, आपको तो लॉस होना है, तो इसलिए इस प्रकार के विचार भी टाइम
1: तो
0: वेस्टर
1: फिर
0: है।
1: हम क्या
0: और
1: करें? मतलब आप
0: नहीं
1: सड़क पे जा रहे हैं, वो दिख रही हैं चीजें, तो हम पढ़ेंगे।
0: नहीं लेकिन तो आप और कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग करिए।
1: अच्छा,
0: नहीं
1: पर वो फिर
0: केवल
1: एंजाइटी नहीं होगी? वो फिर
0: नहीं
1: बार बार बार बार फ्यूचर के बारे में सोचते
0: नहीं
1: जाना।
0: प्लानिंग आप कर रहे हैं कि अब जाकर के मुझे क्या करना है, और कोई काम करना है उसके बारे में कुछ सोचिए, तो वो एक्चुअली प्रोडक्टिव थॉट होगा। नहीं तो सिर्फ एड को पढ़ना वो तो वेस्ट थॉट हो गया। और भी एक बात भी, लोग आपस में बैठ के गॉसिपिंग करते हैं एक दूसरे के बारे में कुछ सोचते, बोलो नेचुरल करो, नेगेटिव नहीं भी है, नहीं ऐसे ही कुछ चर्चा कर
1: Why
0: रहे
1: do we
0: हैं।
1: enjoy it so much? I wanted to talk about it. It means waste जब हम create कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आनंद क्यों प्राप्त कर रहे होते
0: इट्स अ
1: हैं?
0: स्पाइस इन इट इनफैक्ट। और ये भी कहेंगे इसको एक प्रकार से तो नेगेटिव भी कह सकते कि भी किसके बारे में सोच करके हम आनंद ले रहे हैं, उसके अवगुण के बारे में कोई डिस्कशन करते हमको अच्छा लग रहा है, तो वेस्ट तो है ही है, साथ साथ कहेंगे वो नेगेटिव भी है।
1: नहीं, आई अंडरस्टैंड कि दीज आर वेस्ट थॉट्स। खासकर गॉसिप पे तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं। अननेसेसरी इतना टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, बट हम उसमें सक्ड इन क्यों होते हैं? व्हाट इज इट दैट मेक्स अस टॉक अबाउट अदर पीपल एंड यू नो लाइक कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम को मजा आता
2: मेक्स मी
1: है?
2: फील सुपीरियर सी, जितना मैं अपने आसपास के लोगों के लिए उनकी निंदा कर रही हूँ एंड फिर सब लोग भी उसमें जुड़ रहे हैं। और हम क्या गॉसिप, मतलब क्या कमजोरियाँ, व्यर्थ चिंतन, उसमें कभी भी विशेषताएं नहीं डिस्कस हो रही हैं। गॉसिप मीन्स कि इट्स अ नेगेटिव थिंकिंग, तो दूसरों की नेगेटिव कहीं ना कहीं हम जानबूझ के नहीं कर रहे कि हाँ ये मुझे अच्छा फील करा रहा है, बट एक्चुअली सटल वे में दूसरे को नीचे खींचना मुझे फील होता है कि हाँ आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, सो आई एम अ नाइस पर्सन। तो दिस इज ट्राइंग टू यू नो स्टिम्युलेट माई सेल्फ टू फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। दिस इज अ वेरी सटल वे ऑफ मेकिंग योर सेल्फ सुपीरियर टू अदर पीपल।
1: लेकिन हम तो पहले जो बात की कि फील गुड, यू नो जो थॉट्स आपको गुड फील कराएं, दे आर ओके।
0: नॉट एट समवन्स कॉज,
1: नहीं, पर उसको तो पता नहीं चल रहा ना।
2: एनर्जी तो गई
0: तो
2: ना,
0: गई वो बात
1: एनर्जी
0: भी
1: कितनी
0: जाएगी वहां
1: पीछे।
0: तक
2: हाँ, बात तो जाएगी
0: जाएगी।
2: लेकिन एनर्जी कितनी गई। और मैं इंस्ट्रूमेंट बनी, अगर मेरे अंदर आपके प्रति कोई नेगेटिव थॉट चल भी रहा है, अगर मैंने उनको 5 लोगों के साथ शेयर किया, फिर 5 लोगों ने भी उस तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, ये सारी अगर मैं निमित्त बनी आप तक भेजने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक अकाउंट क्या क्रिएट हो रहा है? 5 लोग अगर आपको इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, रिटर्न भी मैंने क्रिएट किया था। वो जो बीज एंड द एप्पल, दिस इज दैट, कि वो जो बीज बोया वो मैंने बोया नेगेटिव, एप्पल सारे कैसे निकले, ये सारे सड़े हुए निकले, जिम्मेवार कौन? आई हैव टू कीप चेकिंग द सीड एट एवरी पॉइंट कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। फिर आप बैठे होंगे कभी एंड आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ आज, पता नहीं लेकिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेरी नाइस टूडे।
1: लेकिन मैंने कोई उनकी कोई ऐसी बुराई ना की हो। आई एम एक्चुअली गोइंग टू द साइकोलॉजी ऑफ द गॉसिप आल्सो। आई एम जस्ट हैविंग फन।
0: इसलिए तो वेस्ट थॉट कहा ना, हम नेगेटिव नहीं कह रहे हैं, बोलो नेगेटिव एक सटल डिमार्केशन लाइन है, वो नेगेटिव हो जाता है इमीडिएटली, लेकिन फिर भी आइडियली एज यू आर सेइंग कि भी कोई बुराई नहीं कर रहे, सिर्फ बस ऐसे ही हम टाइम पास कर रहे हैं, तो भी तो टाइम वेस्टर हुआ। एक्चुअली तो हमें कुछ प्रोडक्टिव थॉट होना चाहिए कि जिससे स्वयं का सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, समाज में कोई फायदा हो, औरों को कुछ बेनिफिट हो।
1: वो बातें इतनी बोर क्यों लगती हैं? ये बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो बातें बोर लगती हैं। अगर कोई अब ये सब बातें हो रही हैं और कोई आके कहे कि नहीं आप, हम समाज के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते, हम अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए क्यों नहीं सोचते, वी डोंट लाइक दैट।
2: बिकॉज देर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपके बारे में बैठकर 1 घंटा बात कर सकती हूँ, एक पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ, उसमें मुझे थोड़ी कुछ करना पड़ता है, सिर्फ आपके बारे में बात करना एंड इट्स मेकिंग मी फील गुड। लेकिन जैसे ही अपने बारे में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, विच मीन्स देन आई विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो दैट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन रेडी है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? इट्स ईजी बैठ कर ये इनसे, इनको ऐसे करना चाहिए। इवन अगर समाज के बारे में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं आजकल, देखो समाज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, इट्स ऑलवेज अबाउट दूसरों को क्या
1: सो
2: क्या करना
1: वेदर,
2: चाहिए,
1: क्रिकेट, यू नो
2: एक्टर्स।
1: पॉलिटिक्स, हाँ फिल्म्स, तो इट मींस ये सब उस कैटेगरी में आता है।
0: हाँ सब वेस्ट हुआ
1: एब्सोल्युटली,
0: क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है।
2: क्योंकि और मैं उन बातों पर चिंतन कर रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं
1: पर कई बार कहा जाता है कि फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसलिए ये सारी बातें करते हैं आप तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है।
2: तो फिर उसके बाद सिर्फ ये चेक करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद रिजल्ट क्या निकला, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या थी। वही जैसे गिरीश भाई ने कहा, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव भर रहे हैं, थॉट भी नेगेटिव होगा। इससे अच्छा थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म करें, अभी भी बातें करें बैठकर, चाहे औरों की भी बातें करें, एक दूसरे की भी करें, अपनी भी करें। क्वालिटी विशेषताओं पर भी तो फोकस हो सकती है, उन्होंने जो अचीव किया उस पर भी फोकस हो सकती है, उसके लिए उन्होंने कौन सी स्किल या कौन सी क्वालिटी यूज़ की उस पर भी तो फोकस हो सकती है। जैसे ही अपने आप को जो इन्फॉर्मेशन है उसमें चेंज करेंगे, थॉट्स भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी सटल, लेकिन ये बहुत सटल रूप में हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपना ही कितना नुकसान कर रहे हैं, हम अपना ही कितना फ़ायदा कर सकते हैं। हम लोग खुद देखते हैं पर्सनली कि पहले हम लोग बैठते तो पता नहीं इसकी उसकी कितनी बातें कर लेते। अब जनरली हम बात करेंगे कि ये सिचुएशन आई, मैंने ना इसको इस तरह से हैंडल किया, यहाँ पर आई फेल्ड टुडे, यहाँ पर आई कुड डू इट। नाउ दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन इज़ यूजफुल फॉर मी ऑल्सो एंड इट्स यूजफुल फॉर इवन द अदर पर्सन विद हुम आई एम टॉकिंग। तो कॉन्वर्सेशन चेंज हो गया, ऐसे नहीं बोरिंग हो गए, हमने बात बात करना बंद कर दिया, हम एकदम चुप हो गए। कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी चेंज हो गई एंड वो मोर रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई, वो प्रोडक्टिव हो गई, तो फिर वो वेस्ट में नहीं जाएगी,
1: वो लर्निंग में आ जाएगी।
2: लर्निंग में आ जाएगी, तो वो आपका अपना फायदा, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको भी इंस्पिरेशन।
0: और जो इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो अगर उस क्षेत्र में है तो आपको जरूरत है। वैसे मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है, और क्रिकेटर की आप कमियां निकाल रहे हैं, बोले आनंद आता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज आई डोंट नीड इट। और भी कई चीजें है कि जिसका मेरा कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर ऐसी बातें क्यों मैं अपने अंदर फीड कर रहा हूँ, मेरे लिए वेस्ट थॉट है।
2: एक बहुत सटल संस्कार बनता है जब आप टीवी देखते हैं या आप मूवी देखते हैं, वो लोग वहाँ है उस तरफ, यू कांट सी देम, यू कांट टॉक टू देम, लेकिन आप उनको यू नो जजमेंटल होते जाते हैं। संस्कार किसका बन रहा है जजमेंटल होने का, वो संस्कार मेरा बन रहा है। तो अभी मैं वो क्रिकेटर्स और एक्टर्स के प्रति जजमेंटल होती, धीरे धीरे मेरे आसपास जो लोग होते उनके प्रति मैं जजमेंटल होने लग जाती हूँ, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच पीपल आर गोइंग टू टेक फ्रॉम मी।
1: क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना कि उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि मेरी हैबिट वही बन जाएगी,
0: इसलिए कई बातें तो सुनो भी नहीं, वन वहां भी ना कहना।
1: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, अगर मेरे आसपास लोग बातें कर रहे हैं विल इट इफेक्ट मी,
0: यू डोंट लिसन, क्योंकि सुना तो है ना आपने। कई लोग कहते एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा नहीं होता, दोनों कानों से सुन रहे, अंदर जाता है
1: इन्फॉर्मेशन, जा रही है अंदर,
2: जा रही है, और जो जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी वो सोर्स ऑफ थॉट्स है। बहुत फिर जो आजकल हम कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझ में अभी आ गई है, क्रिएट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं भरी, इन्फॉर्मेशन नेगेटिव, थॉट्स भी फिर नेगेटिव या वेस्ट की डायरेक्शन में ही जाएंगे।
0: सुकरात के लिए बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं, कहते सुकरात के पास उसका एक मित्र गया और उसने कहा कि हम दोनों का जो तीसरा मित्र है उसके बारे में मेरे पास बहुत अच्छे समाचार है, तुमको सुनाऊं? तो सुकरात ने कहा नहीं ठहरो, पहले हम ट्रिपल फिल्टर टेस्ट करेंगे, और तीन फिल्टर्स में से एक फिल्टर में से भी तुम्हारी बात पहुँच जाए तो ज़रूर सुनाना। का क्या? कहते पहला फिल्टर है कि तुम्हारे पास जो समाचार है वह सत्य है। उसने कहा नहीं पता, मुझे भी किसी ने सुनाए हैं, तो एक फिल्टर से तो आपकी बात नहीं पहुंची। जो दूसरा फिल्टर है कि आपके पास जो समाचार है कुछ अच्छे समाचार है, कहा नहीं नहीं साहब तो बहुत बुरे समाचार है, तो दूसरे फिल्टर से भी नहीं पहुंची। तीसरे फिल्टर से भी निकल जाए तो ठीक है। तीसरा फिल्टर है क्या कोई काम की बात है, कहा नहीं ये तो बेकार की बात है। तो सुकरात ने कहा मुझे नहीं सुनाओ, देखो तीनों फिल्टर से ये बात नहीं पास हुई।
1: सही बात है, सच की बात, सच्चाई का फिल्टर, और आपने कहा कि यूज़फुल
0: और अच्छी बात,
1: तो ये हमने आई थिंक वो फिल्टर्स लगाने बहुत जरूरी हैं। अच्छा ये तो हम बात रही डॉक्टर पटेल वेस्ट थॉट्स की, अब हम आते हैं आपने कहा नेसेसरी थॉट्स एंड देन वी मूव ओवर टू राइट एंड
0: पॉजिटिव थॉट्स आल्सो। हां नेसेसरी थॉट है कि भी कहीं काम आपको करने, स्नान करना है, खाना करना है, आपको ऑफिस जा कर के काम करना है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उसके बारे में भी सजगता से करो, ज़्यादा सोचो नहीं, से जो नेसेसरी थॉट्स है वो भी कम से कम हो तो अच्छा है। कार्य जरूर करो लेकिन ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि हर विचार आपकी एनर्जी को ले जाता है। तो इसके कारण अगर आप कम सोचेंगे नेसेसरी थॉट्स, जो नेसेसरी कार्य कर रहे उसमें भी, तो एनर्जी को सेव करेंगे और अल्टीमेटली आप थकेंगे नहीं.
2: मतलब उसमें अननेसेसरी कोई थॉट्स ना हो, दैट इज इम्पोर्टेंट.
1: नेसेसरी
2: हो लेकिन अननेसेसरी कोई थॉट्स
0: तो बिल्कुल जीरो,
2: वेस्टिंग एनर्जी.
1: अच्छा एक और, अब हम आते हैं राइट एंड पॉजिटिव थॉट्स पे, उनमें क्या शामिल है?
0: हाँ, अब पहले हम पॉजिटिव थॉट्स को ले, क्योंकि पॉजिटिव लोगों को मुश्किल लगता है. जब पॉजिटिव नहीं पॉसिबल है तो फिर हम राइट थॉट को कर लेते.
1: लेकिन एक हमने सर्वे किया तब ज्यादातर लोगों ने बोला कि हम तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं. आई एम वेरी पॉजिटिव. दे ऑलवेज फील दैट आई एम वेरी पॉजिटिव. व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव? यू नो, मैं तो कभी बुरा नहीं सोचती, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहती हूँ. जिंदगी एक लड़ाई है जिसमें आगे लड़ना ही है, आगे बढ़ना ही है. तो व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय पॉजिटिव?
2: जिंदगी एक लड़ाई है भी एक नेगेटिव थॉट है. No, जिंदगी एक लड़ाई है. What's the quality of the thought? तो आपको लड़ाई थॉट क्रिएट करते ही
1: आपको युद्ध दिखने लगता है
2: आएंगे. और फिर जैसे जिंदगी एक लड़ाई है तो फिर हार और जीत है. और अगर हार और जीत है तो फिर आप जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार है. पूरी चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स बन जाएगी उसके बाद. एवरी थॉट इज सो इम्पोर्टेंट.
0: पॉजिटिव इज लाइफ इज अ गेम,
1: लाइफ इज अ
0: जर्नी. इस प्रकार के थॉट्स हो तो उस समय पॉजिटिव थॉट्स बनेंगे. और जो ये लोग कहते हैं ना कि हम सदैव पॉजिटिव सोचते, कई बार प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे. अगर वो अपनी एनालिसिस करें अच्छे से तो देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारे उनके ऐसे थॉट्स है जिसमें अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो औरों पर डाउट कर रहे हैं, और कुछ ऐसी बात है, इनसिक्योरिटी की बात है. भल चलो थॉट लेवल पर नहीं भी पहुंची, लेकिन वो अंदर में फीलिंग तो आ रही है.
1: सो दैट इज आल्सो नेगेटिव. डॉक्टर पटेल, जिन्होंने कहा कि मैं जिंदगी में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूं,
0: देन व्हाट?
1: बट ही डजंट वांट टू चेंज दिस.
0: एक लिमिटेशन उन्होंने क्रिएट करी, मतलब इतना ही है उनके लिए, आगे तो कुछ है ही नहीं. परंतु आगे तो बहुत कुछ है.
1: लेकिन वो ये सोचते हैं,
0: ट्रस्ट नहीं करके भी वो कंफर्टेबली जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रस्ट करने लगे तो इससे 10 गुना मिल सकता है.
2: और अगेन ये लोग जो ऐसा फील करते हैं कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, मतलब वो सब पे डाउट करते हैं. देयर इज नॉट अ जीरो थॉट. आई डोंट ट्रस्ट यू मींस आई डाउट यू. एंड अगर मैंने ये क्रिएट कर लिया है कि मैं ऑलमोस्ट सभी पर डाउट करते हूँ जो मेरे आसपास है, तो मैंने सभी को कौन सी एनर्जी भेजी है? सभी से रिटर्न भी अगर मैं आपको डाउट करूं तो आप भी मेरे बारे में कैसा सोचेंगे? देन दिस पर्सन नीड्स टू चेक कि हाउ डज ही फील इनसाइड, ही और शी. बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इतने लोगों से मुझे उस तरह की एनर्जी मिलेगी, मैं अच्छा फील नहीं कर सकता. ये फर्क है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा ये अच्छा फील नहीं करना ये एक्चुअली उस बात की वजह से है.
1: बट ही फील, ही सेड दैट आई फील सेफ.
2: वो इसलिए क्योंकि अगर हम ट्रस्ट करते हैं सब पे, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई मुझे एक धोखा देगा. अगर हम देखें लेट्स से कि मुझे बहुत क्लोज अपने जीवन में और वर्किंग एरिया में 50 लोगों से डील करना पड़ता है सारा दिन में, तो 50 लोगों पर डाउट करते हैं ताकि 50 में से कोई एक कभी धोखा ना दे दे. जस्ट लुक एट द लॉ ऑफ एवरेज. हम क्या कर रहे हैं? तो मैं 50 लोगों से नेगेटिव एनर्जी लेने के लिए रेडी हूँ, 50 लोगों के प्रति नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अपने आप को इतना स्टेबल नहीं कर सकता कि अगर किसी एक ने कुछ ऐसा कर भी दिया तो आई विल रिमेन स्टेबल एट दैट टाइम. एंड फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही जो मेरी लाइकिंग के विरुद्ध है. एंड इतना डाउट क्रिएट करने के बाद उसको फेस करने की मेरे अंदर वैसे भी ताकत नहीं होगी. ट्रस्ट करें, सब पे ट्रस्ट करें. बहुत एनर्जी अच्छी आप क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आपको वापस मिलेगी. अगर वो 50 में से कोई एक कुछ और कर भी देता है, यू हैव इनफ पावर टू फेस द सिचुएशन.
1: बिकॉज यू आर वेरी फुल ऊर्जा और दुआएं,
2: यू आर वेरी फुल, यू विल बी एबल टू फेस द सिचुएशन. एंड फिर आपको जो आप जो उनको वो एनर्जी भेजेंगे, दैट माइट इवन हेल्प देम टू चेंज द वे दे आर लीडिंग देयर लाइफ. इट्स पॉसिबल.
0: 98 तो अच्छा हुआ ना, 2% ही. अगर एक ने बुरा किया तो 2% ही आपको लॉस है, 98% तो बेनिफिट है कि जिसको आप रोक रहे हैं उनसे
2: it's
0: आपको
2: like,
0: सपोर्ट मिलेगा.
2: इट्स लाइक सेइंग कि मैं रोड पे कभी भी नहीं जाऊंगा ताकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए. इसका मतलब आप अपने जीवन को कितना रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे कि आप कभी सड़क पे बाहर निकलेंगे ही नहीं क्योंकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए. इट्स लाइक दैट, रिस्ट्रिक्टिंग योर लाइफ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वन पर्टिकुलर
0: फैमिली एक्सपीरियंस. जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको चाइल्डहुड में कहीं कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, समबडी हैज ब्रोकन देयर ट्रस्ट, और बस वो फिर अंदर में एक ब्लॉक बन गया.
1: तो पर वो दे फील कंफर्टेबल विद दैट.
0: बोले कंफर्टेबल फील कर रहे हैं लेकिन वो अपना जो सचमुच हासिल करना चाहे वो नहीं कर रहे हैं।
1: तो वो क्या अपने आप कर सकते हैं या दे नीड समबडी एल्स टू हेल्प देम?
0: अपने आप भी कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं अगर इस चीज को वो समझे अच्छे से कि ये मेरे में ब्लॉक है और उस ब्लॉक को मुझे रिमूव करना है।
1: इट ऑल कम्स बैक टू जो हमारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज
2: हैं। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे ना कभी भी। और फिर वो आप शुरू वर्किंग लोगों से करोगे कि मैं अपने काम के क्षेत्र पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति घर पे भी नहीं ट्रस्ट कर पाएगा।
1: उन्होंने बोला मुझे, ही सेज कि नहीं है, तो तभी तो उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है।
2: अब जिसके रिश्ते, कोई भी रिश्ता ऐसे अच्छा ना हो, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, अंदर हमेशा एक खालीपन मिलेगा।
1: तो ये हुआ कि हमने जो आपने कहा पॉजिटिव थॉट्स, वो जो आपको फील गुड कराए।
0: नहीं, उतना ही नहीं, पॉजिटिव तो एक तो सिंपल तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि भी हर परिस्थिति में कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो हम एडवांटेज को ढूंढ निकाले और फिर उसे बार बार रिपीट करें। और कई परिस्थितियों में एडवांटेज छोटा होता है, डिसएडवांटेज बड़ा है, तो छोटा एडवांटेज भी ढूंढ निकाले। कई बार वो एडवांटेज इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो इनडायरेक्ट एडवांटेज को भी ढूंढ निकाले। और ऐसी परिस्थिति में तो मैं एडवाइस देता हूँ कि उसको लिखो। सोचने जाएंगे तो नेगेटिव में ही जाना है, क्योंकि सामने नेगेटिव है, फोर्स भी नेगेटिव का ज्यादा है, तो इसलिए पॉजिटिव को लिखो 20 बार 25 बार, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव की ओर ध्यान जाएगा।
1: हर सिचुएशन, हर व्यक्ति में हमें पॉजिटिविटी दिख सकती है, होती ही है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं
0: कर सकते हैं।
2: अगर टफेस्ट सिचुएशन भी हो ना, जिसमें आपको लगे कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, सपोज
1: किसी लव्ड वन की डेथ में क्या पॉजिटिव है,
2: उसमें भी उस सिचुएशन को अगर मैं स्टेबिलिटी से हैंडल करके बाहर निकल आई, आई हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर, उतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। सी इट्स ऑलवेज कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, चाहे वो नुकसान जो भी हो, लेकिन और कोई नुकसान मैं नहीं क्रिएट करूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उस टाइम पर अपनी स्टेट ऑफ माइंड पर ध्यान रखने से। डेफिनेटली, जैसे आपने कहा किसी ने शरीर छोड़ा, इसमें किसी को कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा उसके प्रति भी अभी मुझे कैसी एनर्जी भेजनी है, वो आत्मा भी अभी कहीं और है, और जो मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ वो उसको जा रहे हैं, मैं नुकसान तो नहीं कर सकती ना उसका, उसका अपना और जो परिवार के बाकी लोग हैं। आई कैन नॉट क्रिएट सो मच पेन फॉर सो मेनी पीपल। सो एवरी टाइम नेगेटिव सोचना कभी भी फायदे में नहीं हो सकता किसी के लिए भी।
0: और बहुत सारी बातें कि भी इतना ही समय उस आत्मा का मेरे साथ पार्ट था, तो वह पार्ट पूरा हुआ तो मैं पीसफुली अच्छे वाइब्रेशन दूं।
1: अच्छा, और इसमें राइट थॉट्स में क्या शामिल होगा?
0: पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत सारी किताबें भी है, लोगों ने पढ़ी भी है किताबें, लेकिन फिर भी लोग पॉजिटिव नहीं थॉट सोच पाते, क्योंकि उसमें एक जो मूल चीज में ही अगर वह पकड़ लो तो सब कुछ हो जाएगा। और उसका मूल यह है कि ये इस बात को पक्की कर लो कि हो सकता है कि वर्तमान में कोई अच्छी बात दिखाई दे नहीं रही है, इनडायरेक्ट भी नहीं दिखाई दे रही है, तो भी यह मान्यता बना लो कि भविष्य में कुछ फायदा होगा, और यह भी पॉजिटिव है। अगर एक बार पक्का व्यक्ति कर ले कि भी फ्यूचर में इससे कुछ बेनिफिट होगा, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है कि जिसमें व्यक्ति को उस समय कोई बेनिफिट नहीं हुआ लेकिन आगे चल करके कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ।
1: लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में, तो वैसे भी अध्यात्म भी ये कहता है कि ना पास्ट के बारे में ना फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के बारे में सोचो, तो फिर ये अगेन
0: प्रेजेंट में रह रहे हो, लेकिन ये मान्यता तो बना सकते हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है
1: कि इसमें ही कुछ फ्यूचर
0: लॉस हुआ है ना, अभी बिजनेस में लॉस हुआ तो भी मैं मन को पीसफुल रखूं कि भले इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसके कारण फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, तो वह भी एक प्रकार से पॉजिटिव हुआ।
2: उससे आप फ्यूचर में नहीं जा रहे, आप अपने प्रेजेंट को ठीक कर रहे हो।
1: सी व्हाट इज द एम, आपको हौसला दे रहे हो।
2: नहीं, एंड इट्स अ बिलीफ सिस्टम जिसको आपको अच्छी तरह से पक्का करना है, एंड थॉट्स विल ग्रेविटेट द सिचुएशन टुवर्ड्स यू। सी, ये परमात्मा हमेशा हमें कहते हैं ड्रामा की हर सीन, क्योंकि ये पूरा एक ड्रामा है ना, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, परफेक्ट है, कल्याणकारी है, इसको इतना पक्का हम लोगों ने किया है, एंड एक्चुअली हर सीन में कुछ बेनिफिट होता है। कोई सीन्स ऐसी होती हैं जो उस टाइम तो बहुत ही अकल्याणकारी लगती हैं, लेकिन अगर रिपीटेडली आपने अपने आप को तैयार किया है इस बात के लिए, इसमें भी कल्याण है, तो पहले तो आप उस समय उस टाइम स्टेबल हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद, चाहे वो टाइम कितना हो, 6 महीना, 1 साल, कई बार उससे भी बहुत ज़्यादा, आपको वो कल्याण मिलता है, एंड फिर आप कहते हैं अच्छा हुआ वो हुआ, तो देखो अब कैसा हुआ. वो तो ठीक है, वो तो बाद में, लेकिन उस टाइम कैसा बीता आपका टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बाय क्रिएटिंग दिस थॉट के इसमें भी कुछ कल्याण है, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, आप टोटली प्रेजेंट पर फोकस्ड हैं. एम इज़ के हर थॉट प्रेजेंट में हो और हर थॉट स्टेबिलिटी की तरफ हो, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस मैं क्रिएट नहीं करूँ. डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से सिचुएशन मैग्नीफाई हो जाती है. यू नो, छोटी सी भी प्रॉब्लम है लेकिन मैं उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं ढूंढूँ, नेगेटिव ही ढूंढूँ, तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी मेरे लिए. कई लोग ऐसे हैं कि सब चीज़ें भी पॉजिटिव हो रही होंगी
1: लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर पाते,
2: नहीं उसमें उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव मिल जाएगा. एक बहुत डीप रूटेड संस्कार है, ये संस्कार बन गया है नेगेटिव ढूंढने का. अब ग्रेजुअली संस्कार बनाना है पॉजिटिव ढूंढने का
0: और मान्यता बना लेनी. कुदरत में भी देखो तो देखो, सुबह की सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, उससे पहले घोर अंधियारी रात होती है. तो जीवन में भी ऐसा ही है, जब घोर अंधियारी रात आ जाए तब सोचो कि अभी सुबह का सूरज उगने वाला है. बस ये मान्यता बना लो तो भी पॉजिटिव होंगे.
1: डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, सचमुच आप वक्त निकाल कर आए. आज भी बात हुई कि बहुत लोगों का जो है वो कल्याण है, तो ये पॉजिटिविटी का जो एस्पेक्ट आज आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच. अब देखने की बात ये है कि जिसे मैं अभी तक मान रही थी कि ये तो नेचुरल है, लोगों के बीच बैठकर बात करते थे और हर रोज ही कहीं ना कहीं वक्त निकाल रहे थे, फोन पर बात कर रहे थे लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे, कितने हार्मफुल हो रहे थे. क्या वो किसी भी तरह से यूज़ हो रहे हैं? और हमने सोचा कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फ़र्क पड़ रहा था. ना सिर्फ उन लोगों तक वो एनर्जी पहुंच रही थी, मेरे अपना जो संस्कार है, मेरी अपनी हैबिट बनती जा रही थी इस तरह की थॉट्स क्रिएट करने की. क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि थॉट्स मैं खुद क्रिएट करता हूँ या करती हूँ. तो फिर अगर मैं ये वेस्ट, खासकर आज जो हमने वेस्ट थॉट्स की बात की है, और साथ ही व्हाट इज़ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स हैं क्या, क्यों हम पॉजिटिव थॉट्स नहीं क्रिएट कर पाते, सिचुएशन कोई भी हो हमें कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी मिल जाएगी. जैसे हम पॉजिटिव सिचुएशंस में नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं, वैसे ही हंस की तरह हम क्यों ना हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढें और उसी के साथ स्टिक करें, वो हम खुद क्रिएट करें, ये प्रयास करके देखें. क्योंकि ये हम पूरी जो श्रृंखला है उन स्किल्स को सीख रहे हैं, लाइफ स्किल्स का हिस्सा है इस तरह से अपने थॉट्स के साथ जीना. कोई बात मन में है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे और बात करेंगे. आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति.

0: श्रोते हो नमस्कार, मी प्राध्यापक योगेश सोमण, आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे व्यस्त रेलवे स्टेशन या बस अड्डे को देखा है जहाँ से लगातार गाड़ियाँ छूटती रहती हैं? लोग बड़े बड़े बक्से, भारी भरकम बोरियाँ और न जाने कितना सामान अपने सिर और कंधों पर लाद कर पसीने से तरबतर उन गाड़ियों में सवार हो रहे होते हैं। कोई पीछे छूटने वाला सामान के लिए परेशान है,

तो कोई और ज़्यादा बोझ उठाने की होड़ में लगा है, लेकिन अगर आप उस स्टेशन के उस पार के छोर को देखें जहाँ वे गाड़ियाँ जा रही हैं, तो वहाँ से आज तक कोई भी मुसाफिर यह बताने वापस नहीं आया कि उस मंजिल का सच क्या है, वहाँ क्या नियम चलते हैं और यह सारा भारी सामान वहाँ किसी काम भी आता है या नहीं। हमारी यह जो पृथ्वी और मानव जीवन है, यह भी ठीक वैसा ही एक तरफा स्टेशन है। हम सब यहाँ से एक अनजान यात्रा पर लगातार भेजे जा रहे हैं, लेकिन अपनी नासमझी में तृष्णाओं का इतना भारी बोझ लाद लेते हैं कि चलना भी दुभर हो जाता है। कबीर साहब आज हमें इसी अंतिम महायात्रा की हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला सूत्र। उठ थे कोई न आवई, जासो बुझा थाई, इत थे सबे पठाइए, भार लदाई लदाई। उठ थे कोई न आवई, जासो बुझो थाई,

0: पाएं। श्रोताओं, कबीर साहब मृत्यु और जीवन के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, उठते कोई न आवई उस पार से, यानी मृत्यु के उस पार के अज्ञात लोक से आज तक कोई न आवई, यानी कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। जासो बूझो धाई, जिसके पास मैं धाई यानी दौड़ कर जाऊं और बूझो यानी पूछ सकूं कि भाई उस पार का मार्ग कैसा है, वहां की हकीकत क्या है और उस पार क्या चलता है और इसे किनारे की विडंबना क्या है। अगली पंक्ति में कबीर इसका यथार्थवादी चित्रण करते हैं। इत थे सबे पठाई, इस दुनिया से इस पृथ्वी से हर एक जीव को काल द्वारा एक एक करके पठाई यानी भेजा जा रहा है, विदा किया जा रहा है, भार लदाई लदाई। और अफसोस की बात यह है कि हर कोई यहाँ से अपने सिर पर अहंकार, ईर्ष्या, मोह, संपत्ति और विषय वासनाओं का भारी भार यानी पहाड़ जैसा बोझ लदाई लदाई यानी लाद लाद कर जा रहा है। किसी को यह होश ही नहीं है कि वह सारा बोझ यही छूट जाएगा और केवल कर्मों की गठर ही साथ जाएगी। यह दोहा मृत्यु बोध और अपरिग्रह का महासूत्र है। कंठोपनिषद में जब नचिकेता यमराज से मृत्यु के पार का रहस्य पूछते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि यह मार्ग अत्यंत गूढ़ है और सांसारिक चकाचौंध में अंधा मनुष्य इसे नहीं जान पाता। भार लदाई लदाई, हमारी उन मानसिक आसक्तियों और संचय की प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसे हम जीवन भर ढोते रहते हैं। कबीर समझा रहे हैं कि जब उस पार का कोई भूगोल हमें ज्ञात नहीं है तो फिर इस नश्वर संसार के व्यर्थ के बोझ को सिर पर ढोने की क्या जरूरत है। जो मुसाफिर हल्का होता है, जिसकी चेतना वासना मुक्त होती है, वही उस अज्ञात यात्रा को निर्भय होकर पार कर पाता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा रुक कर अपने सिर और दिल पर रखे बोझ को तौल कर देखिए। हमने अपने मन में कितनी नफरतें, कितने गिले शिकवें, कितनी जायदाद की चिंताएं और दूसरों को नीचा दिखाने का कितना भारी बोझ लाद रखा है। हम भूल जाते हैं कि यहाँ से जाना बिल्कुल तय है, उस पार कोई सामान साथ नहीं ले जाता। आज कोशिश कीजिए इस भारी बोझ को यहीं नीचे उतारने की। अपने मन को हल्का कीजिए, क्षमा कीजिए और प्रेम बांटिए। अपने जीवन के खाली झोली को उस अविनाशी राम नाम के अमृत से भरिए जो उस पार की यात्रा में आपका सच्चा संगी और सहारा बनता है। जब आप भीतर के बिल्कुल भारहीन और निलप्त हो जाएंगे तो मृत्यु का भय भी आपके लिए परम मुक्ति का द्वार बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: ट्यून इन एनीवेयर, रेडियो मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: भाग 65, बा तथागता। विपश्यना ही अशी ज्याचा कर्मकांडाशी संबंध नाही, जिचा अंधश्रद्धेशी संबंध नाही, तेव्हा चुकीची विपश्यना करणे हा अभ्यासकाचा दोष। या दोषी नमुन्यामुळे विपश्यनेला दोष कसा? प्रज्ञावंत असलेला साधक संशोधक असतो विवेकी, मनात येतात विचार त्याच्या, नेहमीच लोककल्याणाचे, योग्य मार्ग दाखवण्याचे, लोकांच्या उत्कर्षाचे, लोकांना सुसंस्कृत बनवण्याचे, त्यामुळे पुन्हा नव्याने प्रज्ञा संशोधकाचे शी अधिकाधिक पुष्ट होत जाते आणि तो अष्टशिलाकडे मार्गक्रमण करू लागतो. तो झुगारतो तैकलादू ऐशो आराम आणि बेगडीपणाने लखलखणारे उथळ आयुष्य. तो त्यागतो उच्च शयनगृह आणि तत्सम व्यवस्था. तो होऊ लागतो निसर्गाशी रममान अतिशय साधेपणाने. निर्वावासा वाटत नाही त्याला श्रीमंतीचा तकलादू बडेजाव, किंवा चमचमीत अन्न पदार्थ मोहू शकत नाही त्याला पदार्थाच्या उथळ अस्तित्वाने. आपल्या आचरणातील आदर्शाने तो आखून देतो जनसमुदायासाठी विवेकशील जगण्याची नियमावली आणि शाश्वत तत्वज्ञान रेखाटणारा तो धुळीत रस. त्याच्या ठाई नसतो बडेजाव स्वतःला मिरवण्याचा, स्वतःची विद्वत्ता अकारण दाखवण्याचा. तो आपल्या विद्वत्तेचा सदुपयोग करतो शांतपणाने लोककल्याणासाठी. नसते त्याला कसलीही अपेक्षा लोकांकडून स्वतःसाठी किंवा स्वतःच्या लौकिक प्रसिद्धीसाठी. त्याचे कार्य अविरत सुरू राहते. निसर्ग नियमाप्रमाणे निसर्गाशी एकरूप होत, समाधीमध्ये शिरत, संशोधन करत, प्रज्ञेचे सृजन निर्माण करीत लोकसमूहाच्या वाटपासाठी. शील समाधी प्रज्ञा असतो असा संशोधन पायऱ्यांचा अनुक्रम, तसाच असतो अनुक्रम प्रज्ञाशील करुणेचाही. प्रज्ञेचा संशोधक हा चिकित्सक शोधणारा, तसाच स्पंदनांच्या अनुभूतीतून उगवणारा निर्माताही. तो उथळ भावनिक नसतो, तसाच नसतो निव्वळ कठोर टीकाकारही. त्याच्या ठाई शोध सृजन. प्रज्ञेतून पुन्हा शिलाची निर्मिती आणि पुन्हा नव्याने प्रचंड निर्माण झालेला प्रेमभाव म्हणजेच करुणा. आपल्या ज्ञानाचा ठेवा लोककल्याणाच्या भूमिकेतून करुणा मार्गाने तो प्रवाही ठेवतो. आणि अस्सल संस्कारांचा उदय माणसामध्ये झाल्याचे शिक्कामोर्तब करतो.
3: सारेगामा कर्म
2: वा तथागता, तुझ्या प्रज्ञामय संशोधनाने संस्कारपूर्ण माणूस कसा असावा याचा शोध लावला. दोन हात, दोन पाय, दोन डोळे, एक डोके, एक नाक असलेला प्राणी म्हणजे माणूस नव्हे. माणूस मेंदूने आंधळा नको, तर तो असावा विचारी. माणसात नैतिकता कशी असावी, माणसाचा बुद्धिवाद कसा असावा, माणसाने विचार कसा करावा, माणसाने माणसाशी कसे वागावे याचा वस्तुपाठ तुझ्या तत्वज्ञानाने दिला आणि मानवतावादाच्या मांगल्याचे विवेकी सूत्र माणसाला दिले.

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हमने जहाँ बात की लाइफ स्किल्स की, यानी कि जीवन की वो कौशल, वो कलाएं जो शायद हम नहीं जान पाए थे, और तभी जीवन जो था वो ऐसा नीरस लग रहा था, वैक्यूम लगता था, खाली खाली लगता था, दुख दर्द हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसमें एक बात, एक ऐसी स्किल जो हमने समझी कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार वो बहुत पावरफुल हैं, हम उनके थ्रू, उस ऊर्जा के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। बात एक और जो हमने समझी, उन्हें क्रिएट करने का मादा की शक्ति मेरे पास है, यानी अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स मैं खुद क्रिएट करता हूँ, सिचुएशन कोई भी हो। हमने कई तरह के थॉट्स के बारे में बात की, किस तरह के थॉट्स हैं, 7 types of thoughts जो हम क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पावरफुल थे टॉक्सिक थॉट्स, यानी कि पॉइजनस थॉट्स, वो थॉट्स जो मुझे साफ नज़र आते हैं। कई और तरह के थॉट्स थे, उन पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, नेगेटिव थॉट्स, आपने कहा टॉक्सिक थॉट्स, और उसके बाद बात की थी नेगेटिव थॉट्स की। टॉक्सिक थॉट्स, अगर हम एक बार और उसको क्लियर कर लें कि वो जो बहुत पावरफुल होते हैं, चाहे वो गुस्से के थे, नफरत के थे, कई बार देखा जाए तो हर्ट के थे, और थोड़ा सा जो हमें दिख रहे थे एक्सप्रेशंस, उसके बाद नेगेटिव में आपने कहा था इरिटेशन भी शामिल है, डर, एंग्जाइटी, घबराहट, और ना सिर्फ ये कि वो दूसरा कुछ गलत कर रहा है, बल्कि ये सारी चीज़ें भी उनमें शामिल हो रही थी। डॉक्टर पटेल, लेकिन कहा जाता है जिन्हें हम नेगेटिव थॉट्स कह रहे हैं अभी, कि थोड़ी सी घबराहट, कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ यू नो एग्ज़ाम है, उससे पहले की थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा स्ट्रेस, वो ज़रूरी है, नहीं तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती।
1: लेकिन फिर भी वो नेगेटिव थॉट अगर है तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट है। एक्चुअली जो हम नाम देते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। उसको घबराहट नहीं कहो, एंग्जाइटी नहीं कहो, उसे मोटिवेशन कहो। एक डोरोथॉन्स ग्राफ माना गया है जो कहता है कि जब व्यक्ति में मोटिवेशन है, प्रेरणा है, तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है, लेकिन जब वो नेगेटिविटी का रूप ले लेता है तो उसका परफॉर्मेंस भी नीचे आ जाता है। जैसे थोड़ा सा उससे अगर कंसर्न है, एग्जाम के बारे में कंसर्न है, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन अगर वो डर का रूप ले ले तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए कि भले एग्जाम है तो भी पॉजिटिव विचार आए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है। कहते हैं आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन आई क्यू, तो मैं कर सकता हूँ, वह थॉट होना चाहिए, तब परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर एंग्जाइटी का रूप ले लिया तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव थॉट्स ही जरूरी है।
0: हाउ विल आई

0: नो वेदर माई कंसर्न और माई एंग्जाइटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैसे पता चल पाएगा?
1: डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर फीलिंग.
2: फीलिंग, या
0: हाँ,
1: हाउ आर यू फीलिंग, इमिडिएटली पता चलता है
0: हाँ
1: कि अगर वो नेगेटिव है, डाउट वाली है, फियर ऑफ फेलियर की है, फियर ऑफ नॉट एक्सेप्टेंस,
0: वो जो
1: you know?
0: वो स्टमक में कुछ होना
1: हाँ,
0: शुरू हो जाता है
2: या
0: वो,
2: दिमाग में भी होगा.
0: हाँ, वो
1: ये तो फिजिकल लेवल पर है, बट अदरवाइज इमोशनल लेवल पर भी तो फीलिंग आ जाती है ना. यू कैन मेक आउट वेदर यू आर फीलिंग नाइस और यू आर नॉट फीलिंग वेरी नाइस, वो पता चल जाएगा.
0: कॉन्फिडेंट अगर एग्जाम में या परफॉर्मेंस पहले मन अच्छा है, मजा आने वाला है या मजा आ रहा है, देन इट इज लाइक पॉजिटिव. और अगर लग रहा है कि नहीं मैं से नहीं हो पा रहा, घबराहट है या हो पाएगा या नहीं, तब नेगेटिव.
1: एंड दूसरा भी होगा कि अगर पॉजिटिव है, दे आर स्लोअर द थॉट्स, दे आर फ्यूअर इन नंबर एंड दे आर स्लोअर, तो आपको यहाँ पर काफ़ी साइलेंस या स्टेबिलिटी जैसा लगेगा. लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो बहुत फास्ट चलते हैं, कि उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको वो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा, सर भारी जैसी फीलिंग आएगी, आप थिंकिंग टू मच, पता चलेगा. रिलैक्स्ड फील करेंगे इफ़ इट्स पॉजिटिव, डिस्टर्ब्ड फील करेंगे इफ इट्स नेगेटिव, तुरंत पता चल जाता है. जस्ट उस समय परिस्थिति को ना ब्लेम करें, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि दिस इज़ व्हाट आई एम क्रिएटिंग. और अगर मैं नेगेटिव क्रिएट कर रहा हूँ, उसका मेरी बॉडी पर भी असर आएगा, उसका फिर मेरी परफॉर्मेंस पर असर आएगा. सो लेट मी सिट बैक, चेंज माई थॉट्स, चेंज. क्योंकि थॉट क्या होगी, जैसे आपने कहा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जाम है, इट्स नॉर्मली फियर ऑफ फेलियर, कि अगर नहीं हुआ ठीक तो, अगर पब्लिक को या जो वॉच कर रहे हैं उनको नहीं पसंद आया तो,
0: बहुत लोग डिपेंड कर रहे हैं इस पे, यू नो, बहुत सारी
1: चीजें होती हैं. तो ये सारी तो फियर ऑफ फेलियर की है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन है. तो ये सारी थॉट्स पॉजिटिव कैसे हो सकती हैं? एंड क्योंकि फिर मैंने परफॉर्मेंस करने से पहले जो भी, इवन फाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आज हमें इंटरव्यू पे जाना है, प्रेजेंटेशन करनी है कॉलेज में, कोलीग्स के सामने, क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन करनी है, ये सारी थॉट्स अगर नेगेटिव होंगी तो मैं ऑलरेडी, यू नो, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एक्चुअली मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. एंड फिर उसका मेरी बॉडी लैंग्वेज पर, मेरे फेस पर, एंड फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाइब्रेशंस जो सामने जाएंगे, अगर मैं पहले ही आपको ये वाइब्रेशंस भेजूँ, आप मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको नहीं अच्छा लगने वाला है जो मैं करने वाली हूँ आज, ऑलरेडी आई एम सेंडिंग दैट एनर्जी, एंड ऑलरेडी आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि आज नहीं पसंद आने वाला है जो मैं करूँगी, तो एज आई थिंक सो विल हैपन, वो हो जाता है फिर.
0: तो डॉक्टर पटेल, ये तो रही बात नेगेटिव थॉट्स की, हमने और कई तरह के थॉट्स की बात की थी, वेस्ट थॉट्स थे, उनमें क्या क्या शामिल है?
2: वेस्ट थॉट जो है वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम वेस्टर है. कई बार आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ रहे हो, तो इट इज योर वेस्ट ऑफ टाइम. भले वो कंपनी को फायदा होगा, आपको तो लॉस होना है, तो इस

0: तो वेस्ट थॉट हो गया। और भी एक बात, भी लोग आपस में बैठ के गॉसिपिंग करते हैं एक दूसरे के बारे में, कुछ सोते बोलो नेचुरल करो, नेगेटिव नहीं भी है, नहीं ऐसे ही कुछ चर्चा कर
1: Why
0: रहे
1: do
0: हैं।
1: we enjoy it so much? I wanted to talk about it. Means waste जब हम create कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आनंद क्यों प्राप्त कर रहे होते
0: इट्स अ
1: हैं?
0: स्पाइस इन इट इनफैक्ट, और ये भी कहेंगे इसको एक प्रकार से तो नेगेटिव भी कह सकते कि भी किसके बारे में सोच करके हम आनंद ले रहे हैं, उसके अवगुण के बारे में कोई डिस्कशन करते हमको अच्छा लग रहा है, तो वेस्ट तो है ही है, साथ साथ कहेंगे वो नेगेटिव भी है।
1: नहीं, आई अंडरस्टैंड कि दीज आर वेस्ट थॉट्स. खासकर गॉसिप पे तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं. अननेसेसरी इतना टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, बट हम उसमें सक्ड इन क्यों होते हैं? व्हाट इज इट दैट मेक्स अस टॉक अबाउट अदर पीपल एंड यू नो लाइक कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम को मजा आता
2: मेक्स
1: है?
2: मी फील सुपीरियर. सी, जितना मैं अपने आसपास के लोगों के लिए उनकी निंदा कर रही हूँ, एंड फिर सब लोग भी उसमें जुड़ रहे हैं, और हम क्या गॉसिप मतलब क्या, कमजोरियाँ, व्यर्थ चिंतन, उसमें कभी भी विशेषताएं नहीं डिस्कस हो रही हैं. गॉसिप मीन्स कि इट्स अ नेगेटिव थिंकिंग. तो दूसरों की नेगेटिव कहीं ना कहीं हम जानबूझ के नहीं कर रहे कि हाँ ये मुझे अच्छा फील करा रहा है, बट एक्चुअली सटल वे में दूसरे को नीचे खींचना, मुझे फील होता है कि हाँ आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, सो आई एम अ नाइस पर्सन. तो दिस इज ट्राइंग टू यू नो स्टिम्युलेट माई सेल्फ टू फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ. दिस इज अ वेरी सटल वे ऑफ मेकिंग योर सेल्फ सुपीरियर टू अदर पीपल.
1: लेकिन हम तो पहले जो बात की कि फील गुड, यू नो जो थॉट्स आपको गुड फील कराएं, दे आर ओके.
0: नॉट एट समवंस कॉज,
1: नहीं, पर उसको तो पता नहीं चल रहा ना.
2: एनर्जी तो गई ना,
0: और बात
2: एनर्जी
0: भी
1: कितनी
0: जाएगी वहां
1: खींची.
0: तक
2: हाँ, बात तो जाएगी,
0: जाएगी.
2: लेकिन एनर्जी कितनी गई, और मैं इंस्ट्रूमेंट बनी. अगर मेरे अंदर आपके प्रति कोई नेगेटिव थॉट चल भी रहा है, अगर मैंने उनको 5 लोगों के साथ शेयर किया, फिर 5 लोगों ने भी उस तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, ये सारी अगर मैं निमित्त बनी आप तक भेजने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक अकाउंट क्या क्रिएट हो रहा है? 5 लोग अगर आपको इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, रिटर्न भी मैंने क्रिएट किया था. वो जो बीज एंड द एप्पल, दिस इज दैट, कि वो जो बीज बोया वो मैंने बोया नेगेटिव, एप्पल सारे कैसे निकले, ये सारे सड़े हुए निकले, जिम्मेवार कौन? आई हैव टू कीप चेकिंग द सीड एट एवरी पॉइंट कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा. फिर आप बैठे होंगे कभी एंड आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ आज, पता नहीं लेकिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेरी नाइस टूडे.
1: लेकिन मैंने कोई उनकी कोई ऐसी बुराई ना की हो. आई एम एक्चुअली गोइंग टू द साइकोलॉजी ऑफ द गॉसिप आल्सो. आई एम जस्ट हैविंग फन.
0: इसलिए तो वेस्ट थॉट कहा ना, हम नेगेटिव नहीं कह रहे हैं, बोलो नेगेटिव एक सटल डिमार्केशन लाइन है, वो नेगेटिव हो जाता है इमीडिएटली, लेकिन फिर भी आइडियली एज यू आर सेइंग कि भी कोई बुराई नहीं कर रहे, सिर्फ बस ऐसे ही हम टाइम पास कर रहे हैं, तो भी तो टाइम वेस्टर हुआ. एक्चुअली तो हमें कुछ प्रोडक्टिव थॉट होना चाहिए कि जिससे स्वयं का सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, समाज में कोई फायदा हो, औरों को कुछ बेनिफिट हो.
1: वो बातें इतनी बोर क्यों लगती हैं? ये बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो बातें बोर लगती हैं. अगर कोई अब ये सब बातें हो रही हैं और कोई आके कहे कि नहीं आप, हम समाज के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते, हम अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए क्यों नहीं सोचते, वी डोंट लाइक दैट.
2: बिकॉज देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपके बारे में बैठकर 1 घंटा बात कर सकती हूँ, एक पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ, उसमें मुझे थोड़ी कुछ करना पड़ता है, सिर्फ आपके बारे में बात करना, एंड इट्स मेकिंग मी फील गुड. लेकिन जैसे ही अपने बारे में, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, विच मीन्स देन आई विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो दैट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. कौन रेडी है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? इट्स ईजी बैठ कर ये इनसे, इनको ऐसे करना चाहिए. इवन अगर समाज के बारे में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं आजकल? देखो समाज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, इट्स ऑलवेज अबाउट दूसरों को क्या क्या करना चाहिए.
1: क्रिकेट,
2: एक्टर्स,
1: फिल्म, तो इट मीन्स ये सब उस कैटेगरी में आता है.
0: हाँ, सब वेस्ट हुआ क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है,
2: क्योंकि और मैं उन बातों पर चिंतन कर रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं
1: पर
2: है.
1: कई बार कहा जाता है कि फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. इसी ये सारी बातें करते हैं आप तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है.
2: हाँ, तो फिर उसके बाद सिर्फ ये चेक करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद रिजल्ट क्या निकला, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या थी. वही जैसे गिरीश भाई ने कहा, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव भर रहे हैं, थॉट भी नेगेटिव होगा. इससे अच्छा थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म करें, अभी भी बातें करें, बातें करें बैठकर, चाहे औरों की भी बातें करें, एक दूसरे की भी करें, अपनी भी करें, क्वालिटी विशेषताओं पर भी तो फोकस हो सकती है, उन्होंने जो अचीव किया उस पर भी फोकस हो सकती है, उसके लिए उन्होंने कौन सी स्किल या कौन सी क्वालिटी यूज की उस पर भी तो फोकस हो सकती है। जैसे ही अपने आप को जो इन्फॉर्मेशन है उसमें चेंज

0: करेंगे, थॉट्स भी अपने आप चेंज हो जाएंगे. दिस इज वेरी वेरी सटल, लेकिन ये बहुत सटल रूप में हो रहा होता है. हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपना ही कितना नुकसान कर रहे
1: बिल्कुल
0: हैं, हम अपना ही कितना फायदा कर सकते हैं. हम लोग खुद देखते हैं पर्सनली कि पहले हम लोग बैठते तो पता नहीं इसकी उसकी कितनी बातें कर लेते. अब जनरली हम बात करेंगे कि ये सिचुएशन आई, मैंने ना इसको इस तरह से हैंडल किया, यहाँ पर आई फेल्ड टुडे, यहाँ पर आई कुड डू इट. नाउ दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन इज यूजफुल फॉर मी ऑल्सो एंड इट्स यूजफुल फॉर इवन द अदर पर्सन विद हुम आई एम टॉकिंग. तो कॉन्वर्सेशन चेंज हो गया, ऐसे नहीं बोरिंग हो गए, हमने बात बात करना बंद कर दिया, हम एकदम चुप हो गए. कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी चेंज हो गई एंड वो मोर रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई, वो प्रोडक्टिव हो गई. तो फिर वो वेस्ट में नहीं जाएगी,
1: वो लर्निंग में आ
0: वो
1: जाएगी।
0: लर्निंग में आ जाएगी. तो वो आपका अपना फायदा, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको भी इंस्पिरेशन.
1: और जो इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो अगर उस क्षेत्र में है तो आपको जरूरत है। वैसे मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है, और क्रिकेटर की आप कमियां निकाल रहे हैं, बोले आनंद आता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज आई डोंट नीड इट। और भी कई चीजें हैं कि जिसका मेरा कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर ऐसी बातें क्यों मैं अपने अंदर फीड कर रहा हूँ? मेरे लिए वेस्ट थॉट है।
0: एक बहुत सटल संस्कार बनता है जब आप टीवी देखते हैं या आप मूवी देखते हैं. वो लोग वहाँ है उस तरफ, यू कांट सी देम, यू कांट टॉक टू देम, लेकिन आप उनको यू नो जजमेंटल होते जाते हैं. संस्कार किसका बन रहा है जजमेंटल होने का? वो संस्कार मेरा बन रहा है. तो अभी मैं वो क्रिकेटर्स और एक्टर्स के प्रति जजमेंटल होती, धीरे धीरे मेरे आसपास जो लोग होते उनके प्रति मैं जजमेंटल होने लग जाती हूँ. दैट इज नॉट समथिंग विच पीपल आर गोइंग टू टेक फ्रॉम मी.
1: क्योंकि
0: सो
1: हम कई बार कहते हैं ना कि उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि मेरी हैबिट वही बन जाएगी.
0: इसलिए कई बातें तो सुनो भी नहीं, वन वहां भी ना कहना
1: हाँ, दिस
0: आना
1: इज व्हाट आई
0: चाहिए।
1: वांटेड टू से कि मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ. अगर मेरे आसपास लोग बातें कर रहे हैं, विल इट अफेक्ट मी?
0: यू डोंट लिसन, क्योंकि सुना तो है ना आपने। कई लोग कहते हैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा नहीं होता। दोनों कानों से सुन रहे हो, अंदर जाता है।
1: इन्फॉर्मेशन जा रही है अंदर.
0: जा रही है, और जो जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी वो सोर्स ऑफ थॉट्स है. बहुत फिर जो आजकल हम कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझ में अभी आ गई है, क्रिएट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं भरी. इन्फॉर्मेशन नेगेटिव, थॉट्स भी फिर नेगेटिव या वेस्ट की डायरेक्शन में ही जाएंगे.
1: सुकरात के लिए बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं। कहते सुकरात के पास उसका एक मित्र गया और उसने कहा कि हम दोनों का जो तीसरा मित्र है उसके बारे में मेरे पास बहुत अच्छे समाचार है, तुमको सुनाऊं? तो सुकरात ने कहा, नहीं ठहरो, पहले हम ट्रिपल फिल्टर टेस्ट करेंगे। वो तीन फिल्टर्स में से एक फिल्टर में से भी तुम्हारी बात पहुंच जाए तो जरूर सुनाना। का क्या? कहते पहला फिल्टर है कि तुम्हारे पास जो समाचार है वो सत्य है। उसने कहा, नहीं पता, मुझे भी किसी ने सुनाए हैं। तो एक फिल्टर से तो आपकी बात नहीं पहुंची। जो दूसरा फिल्टर है कि आपके पास जो समाचार है कुछ अच्छे समाचार है। कहा, नहीं नहीं साहब, ये तो बहुत बुरे समाचार है। तो दूसरे फिल्टर से भी नहीं पहुंची। तीसरे फिल्टर से भी निकल जाए तो ठीक है। और तीसरा फिल्टर है, क्या कोई काम की बात है? कहा, नहीं ये तो बेकार की बात है। तो सुकरात ने कहा, मुझे नहीं सुनाओ। देखो तीनों फिल्टर से ये बात नहीं पास हुई। सही बात है, सच
0: ट्रिपल
1: की बात,
0: फिल्टर, हाँ,
1: सच्चाई का
0: सत,
1: फिल्टर, और आपने कहा कि
0: यूजफुल
1: यूजफुल.
0: और अच्छी बात।
1: तो ये हमने आई थिंक वो फिल्टर्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं. अच्छा, ये तो हम बात रही डॉक्टर पटेल वेस्ट थॉट्स की. अब हम आते हैं, आपने कहा नेसेसरी
0: थॉट्स,
1: थॉट्स
0: हाँ,
1: एंड देन वी मूव ओवर टू
0: मूव टू
1: राइट एंड
0: राइट
1: पॉजिटिव थॉट्स.
0: पॉजिटिव थॉट्स आल्सो। हाँ, नेसेसरी थॉट है कि भी कहीं काम आपको करने है, स्नान करना है, खाना करना है, आपको ऑफिस जा करके काम करना है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उसके बारे में भी सजगता से करो, ज़्यादा सोचो नहीं। से जो नेसेसरी थॉट्स है वो भी कम से कम हो तो अच्छा है। कार्य जरूर करो लेकिन ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि हर विचार आपकी एनर्जी को ले जाता है। तो इसके कारण अगर आप कम सोचेंगे नेसेसरी थॉट्स, जो नेसेसरी कार्य कर रहे उसमें भी, तो एनर्जी को सेव करेंगे और अल्टीमेटली आप थकेंगे नहीं।
1: मतलब उसमें अननेसेसरी कोई थॉट्स ना हो, दैट इज इम्पोर्टेंट ना. नेसेसरी और
0: नेसेसरी
1: अननेसेसरी,
0: हो लेकिन अननेसेसरी कोई
1: अननेसेसरी
0: थॉट्स
1: तो
0: ना हो,
1: बिल्कुल जीरो
0: तो
1: हो।
0: वेस्टिंग एनर्जी.
1: अच्छा, एक और अब हम आते हैं राइट एंड पॉजिटिव थॉट्स पे, उनमें क्या शामिल है?
0: हाँ, अब पहले हम पॉजिटिव थॉट्स को ले, क्योंकि पॉजिटिव लोगों को मुश्किल लगता है। जब पॉजिटिव नहीं पॉसिबल है तो फिर हम राइट थॉट को करना
1: लेकिन एक
0: चाहिए।
1: हमने सर्वे किया तब ज्यादातर लोगों ने बोला कि हम तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं. आई एम वेरी पॉजिटिव. दे ऑलवेज फील दैट आई एम वेरी पॉजिटिव. वट इज मीन्ट बाई नेगेटिव? यू नो, मैं तो कभी बुरा नहीं सोचती, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहती हूँ. जिंदगी एक लड़ाई है जिसमें आगे लड़ना ही है, आगे बढ़ना ही है.
2: तो व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय पॉजिटिव?
3: जिंदगी एक लड़ाई है भी एक नेगेटिव थॉट है, नो, जिंदगी एक लड़ाई है, व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ द थॉट? तो आपको लड़ाई थॉट क्रिएट करते ही
2: आपको युद्ध दिखने लगता है
3: आएंगे, और फिर जैसे जिंदगी एक लड़ाई है तो फिर हार और जीत है, और अगर हार और जीत है तो फिर आप जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार है, पूरी चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स बन जाएगी उसके बाद. Every thought is so important.
1: So their positive is life is a game.
2: Life is a
1: journey. इस प्रकार के thoughts हो तो उस समय positive thoughts बनेंगे. और जो ये लोग कहते हैं ना कि हम सदैव positive सोचते, कई बार practically नहीं सोच रहे. अगर वो अपनी analysis करें अच्छे से तो देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारे उनके ऐसे thoughts हैं जिसमें अपने आप पर ही confidence नहीं है, या तो औरों पर doubt कर रहे हैं, और कुछ ऐसी बात है, इनसिक्योरिटी की बात है. भल चलो थॉट लेवल पर नहीं भी पहुंची, लेकिन वो अंदर में फीलिंग तो आ रही है.
2: सो दैट इज आल्सो नेगेटिव. आई मेट समबडी, डॉक्टर पटेल, जिन्होंने कहा कि मैं जिंदगी में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूं.
1: देन व्हाट?
2: बट ही डजंट वांट टू चेंज दिस.
1: एक लिमिटेशन उन्होंने क्रिएट कर दी, मतलब इतना ही है उनके लिए, आगे तो कुछ है ही नहीं, परंतु आगे तो बहुत कुछ है.
2: लेकिन वो ये सोचते
1: हैं, ट्रस्ट नहीं करके भी वो कंफर्टेबली जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रस्ट करने लगे तो इससे 10 गुना मिल सकता है.
3: और अगेन ये लोग जो ऐसा फील करते हैं कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, मतलब वो सब पे डाउट करते हैं. देयर इज नॉट अ जीरो थॉट. आई डोंट ट्रस्ट यू मींस आई डाउट यू. एंड अगर मैंने ये क्रिएट कर लिया है कि मैं ऑलमोस्ट सभी पर डाउट करते हूँ जो मेरे आसपास है, तो मैंने सभी को कौन सी एनर्जी भेजी है? सभी से रिटर्न भी, अगर मैं आपको डाउट करूं तो आप भी मेरे बारे में कैसा सोचेंगे? देन दिस पर्सन नीड्स टू चेक कि हाउ डज ही फील इनसाइड, ही और शी. बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इतने लोगों से मुझे उस तरह की एनर्जी मिलेगी, मैं अच्छा फील नहीं कर सकता. ये फर्क है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा ये अच्छा फील नहीं करना ये एक्चुअली उस बात की वजह से है.
2: बट ही फील, ही सेड दैट आई फील सेफ.
3: वो इसलिए क्योंकि अगर हम ट्रस्ट करते हैं सब पे, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई मुझे एक धोखा देगा. अगर हम देखें, लेट्स से कि मुझे बहुत क्लोज अपने जीवन में और वर्किंग एरिया में 50 लोगों से डील करना पड़ता है सारा दिन में, तो 50 लोगों पर डाउट करते हैं ताकि 50 में से कोई एक कभी धोखा ना दे दे. जस्ट लुक एट द लॉ ऑफ एवरेज. हम क्या कर रहे हैं? तो मैं 50 लोगों से नेगेटिव एनर्जी लेने के लिए रेडी हूँ, 50 लोगों के प्रति नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अपने आप को इतना स्टेबल नहीं कर सकता कि अगर किसी एक ने कुछ ऐसा कर भी दिया तो आई रिमेन स्टेबल एट दैट टाइम. एंड फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही जो मेरी लाइकिंग के विरुद्ध है. एंड इतना डाउट क्रिएट करने के बाद उसको फेस करने की मेरे अंदर वैसे भी ताकत नहीं होगी. ट्रस्ट करें, सब पे ट्रस्ट करें, बहुत एनर्जी अच्छी आप क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आपको वापस मिलेगी. अगर वो 50 में से कोई एक कुछ और कर भी देता है, यू हैव इनफ पावर टू फेस द सिचुएशन,
2: बिकॉज़ यू आर वेरी फुल ऊर्जा और दुआएं हैं,
3: यू आर वेरी फुल, यू विल बी एबल टू फेस द सिचुएशन. एंड फिर आपको जो, आप जो उनको वो एनर्जी भेजेंगे, दैट माइट इवन हेल्प देम टू चेंज द वे दे आर लीडिंग देयर लाइफ. इट्स पॉसिबल.
1: 98 तो अच्छा हुआ ना, 2% ही. अगर एक ने बुरा किया तो 2% ही आपको लॉस है, 98% तो बेनिफिट है कि जिसको आप रोक रहे हैं, उनसे
3: like,
1: आपको सपोर्ट मिलेगा.
3: इट्स लाइक सेइंग कि मैं रोड पे कभी भी नहीं जाऊंगा ताकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए. इसका मतलब आप अपने जीवन को कितना रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे कि आप कभी सड़क पे बाहर निकलेंगे ही नहीं क्योंकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए. इट्स लाइक दैट, रिस्ट्रिक्टिंग योर लाइफ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वन पर्टिकुलर
1: फेलियर. एक्सपीरियंस है, जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको चाइल्डहुड में कहीं कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, समबडी हैज ब्रोकन देयर ट्रस्ट, और बस वो फिर अंदर में एक ब्लॉक बन गया.
2: तो पर वो दे फील कंफर्टेबल विद दैट.
1: नो, बोले कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन वो अपना जो सचमुच हासिल करना चाहे वो नहीं कर रहे हैं.
2: तो वो क्या अपने आप कर सकते हैं, या दे नीड समबडी एल्स टू हेल्प देम?
1: अपने आप भी कर सकते हैं. हाँ, अपने आप भी कर सकते हैं, अगर इस चीज को वो समझे अच्छे से कि ये मेरे में ब्लॉक है और उस ब्लॉक को मुझे रिमूव करना है.
2: इट ऑल कम्स बैक टू जो हमारे अनरिजॉल्वड इश्यूज
3: है. ऐसे व्यक्ति के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे ना कभी भी. और फिर वो आप शुरू वर्किंग लोगों से करोगे कि मैं अपने काम के क्षेत्र पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति घर पे भी नहीं ट्रस्ट कर पाएगा.
2: उन्होंने बोला मुझे, ही सेज कि नहीं, तभी तो उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है.
3: अब जिसके रिश्ते, कोई भी रिश्ता ऐसे अच्छा ना हो, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. अंदर हमेशा एक खालीपन मिलेगा.
2: तो ये हुआ कि हमने जो आपने कहा पॉजिटिव थॉट्स, वो जो आपको फील गुड कराए.
0: नहीं उतना ही नहीं, पॉजिटिव तो एक तो सिंपल तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि भी हर परिस्थिति में कुछ एडवांटेज भी है कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो हम एडवांटेज को ढूंढ निकाले और फिर उसे बार बार रिपीट करें। और कई परिस्थितियों में एडवांटेज छोटा होता है डिसएडवांटेज बड़ा है, तो छोटा एडवांटेज भी ढूंढ निकाले। कई बार वो एडवांटेज इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो इनडायरेक्ट एडवांटेज को भी ढूंढ निकाले। और ऐसी परिस्थिति में तो मैं एडवाइस देता हूँ कि उसको लिखो। सोचने जाएंगे तो नेगेटिव में ही जाना है, क्योंकि सामने नेगेटिव है, फोर्स भी नेगेटिव का ज्यादा है, तो इसलिए पॉजिटिव को लिखो 20 बार 25 बार, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव की ओर ध्यान जाएगा।
2: हर सिचुएशन हर व्यक्ति में हमें पॉजिटिविटी दिख सकती है, होती ही है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं
0: कर सकते हैं।
3: अगर टफेस्ट सिचुएशन भी हो ना, जिसमें आपको लगे कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, सपोज
2: किसी लव्ड वन की डेथ में क्या पॉजिटिव है,
3: उसमें भी उस सिचुएशन को अगर मैं स्टेबिलिटी से हैंडल करके बाहर निकल आई, आई हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर, उतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। सी इट्स ऑलवेज कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, चाहे वो नुकसान जो भी हो, लेकिन और कोई नुकसान मैं नहीं क्रिएट करूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उस टाइम पर अपनी स्टेट ऑफ माइंड पर ध्यान रखने से। डेफिनेटली जैसे आपने कहा किसी ने शरीर छोड़ा, इसमें किसी को कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा उसके प्रति भी अभी मुझे कैसी एनर्जी भेजनी है, वो आत्मा भी अभी कहीं और है, और जो मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ वो उसको जा रही हैं, मैं नुकसान तो नहीं कर सकती ना उसका, उसका अपना और जो परिवार के बाकी लोग हैं, आई कैन नॉट क्रिएट सो मच पेन फॉर सो मेनी पीपल। सो एवरी टाइम नेगेटिव सोचना कभी भी फायदे में नहीं हो सकता किसी के लिए भी।
0: और बहुत सारी बातें कि भाई इतना ही समय उस आत्मा का मेरे साथ पार्ट था, तो वह पार्ट पूरा हुआ तो मैं पीसफुली अच्छे वाइब्रेशन दूं।
2: अच्छा, और इसमें राइट थॉट्स में क्या शामिल होगा?
0: पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत सारी किताबें भी है, लोगों ने पढ़ी भी है किताबें, लेकिन फिर भी लोग पॉजिटिव नहीं थॉट सोच पाते, क्योंकि उसमें एक जो मूल चीज में ही अगर वह पकड़ लो तो सब कुछ हो जाएगा। और उसका मूल यह है कि ये इस बात को पक्की कर लो कि हो सकता है कि वर्तमान में कोई अच्छी बात दिखाई दे नहीं रही है, इनडायरेक्ट भी नहीं दिखाई दे रही है, तो भी ये मान्यता बना लो कि भविष्य में कुछ फायदा होगा, और ये भी पॉजिटिव है। अगर एक बार पक्का व्यक्ति कर ले कि भी फ्यूचर में इससे कुछ बेनिफिट होगा, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है कि जिसमें व्यक्ति को उस समय कोई बेनिफिट नहीं हुआ लेकिन आगे चल करके कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ।
2: लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में, तो वैसे भी अध्यात्म भी ये कहता है कि ना पास्ट के बारे में ना फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के बारे में सोचो, तो फिर ये अगेन
0: भी गोइंग प्रेजेंट में रह रहे हो, लेकिन ये मान्यता तो बना सकते हैं उनको, जो डिस्टर्ब नहीं होना है
2: कि इसमें ही कुछ फ्यूचर
0: लॉस हुआ है ना, अभी बिजनेस में लॉस हुआ तो भी मैं मन को पीसफुल रखूं कि भले इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसके कारण फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, तो वह भी एक प्रकार से पॉजिटिव हुआ।
3: उससे आप फ्यूचर में नहीं जा रहे, आप अपने प्रेजेंट को ठीक कर रहे हो।
2: सी व्हाट इज द एम, आपको हौसला दे रहे हो।
3: नहीं, एंड इट्स अ बिलीफ सिस्टम जिसको आपको अच्छी तरह से पक्का करना है, एंड थॉट्स विल ग्रेविटेट द सिचुएशन टुवर्ड्स यू। सी, ये परमात्मा हमेशा हमें कहते हैं ड्रामा की हर सीन, क्योंकि ये पूरा एक ड्रामा है ना, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, परफेक्ट है, कल्याणकारी है, इसको इतना पक्का हम लोगों ने किया है, एंड एक्चुअली हर सीन में कुछ बेनिफिट होता है। कोई सीन्स ऐसी होती हैं जो उस टाइम तो बहुत ही अकल्याणकारी लगती हैं, लेकिन अगर रिपीटेडली आपने अपने आप को तैयार किया है इस बात के लिए इसमें भी कल्याण है, तो पहले तो आप उस समय उस टाइम स्टेबल हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद, चाहे वो टाइम कितना हो, 6 महीना, 1 साल, कई बार उससे भी बहुत ज़्यादा, आपको वो कल्याण मिलता है, एंड फिर आप कहते हैं अच्छा हुआ वो हुआ, तो देखो अब कैसा हुआ। वो तो ठीक है, वो तो बाद में, लेकिन उस टाइम कैसा बीता आपका टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाय क्रिएटिंग दिस थॉट के इसमें भी कुछ कल्याण है, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, आप टोटली प्रेजेंट पर फोकस्ड हैं। एम इज के हर थॉट प्रेजेंट में हो और हर थॉट स्टेबिलिटी की तरफ हो, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस मैं क्रिएट नहीं करूँ। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से सिचुएशन मैग्नीफाई हो जाती है, यू नो, छोटी सी भी प्रॉब्लम है लेकिन मैं उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं ढूंढूँ, नेगेटिव ही ढूंढूँ, तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी मेरे लिए। कई लोग ऐसे हैं कि सब चीज़ें भी पॉजिटिव हो रही होंगी
2: लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर पाते,
3: नहीं उसमें उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव मिल जाएगा। एक बहुत डीप रूटेड संस्कार है, ये संस्कार बन गया है नेगेटिव ढूंढने का, अब ग्रेजुअली संस्कार बनाना है पॉजिटिव ढूंढने का
1: और मान्यता बना लेने की। कुदरत में भी देखो तो देखो, सुबह की सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, उससे पहले घोर अंधियारी रात होती है। तो जीवन में भी ऐसा ही है, जब घोर अंधियारी रात आ जाए तब सोचो कि अभी सुबह का सूरज उगने वाला है। वैसे मान्यता बना लो तो भी पॉजिटिव होंगे।
2: डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, सचमुच आप वक्त निकाल कर आए। आज भी बात हुई कि बहुत लोगों का जो है वो कल्याण है, तो ये पॉजिटिविटी का जो एस्पेक्ट आज आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच। अब देखने की बात ये है कि जिसे मैं अभी तक मान रही थी कि ये तो नेचुरल है, लोगों के बीच बैठकर बात करते थे और हर रोज ही कहीं ना कहीं वक्त निकाल रहे थे, फोन पर बात कर रहे थे, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे, कितने हार्मफुल हो रहे थे। क्या वो किसी भी तरह से यूज हो रहे हैं? और हमने सोचा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फर्क पड़ रहा था। ना सिर्फ उन लोगों तक वो एनर्जी पहुंच रही थी, मेरे अपना जो संस्कार है, मेरी अपनी हैबिट बनती जा रही थी इस तरह की थॉट्स क्रिएट करने की, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि थॉट्स मैं खुद क्रिएट करता हूँ या करती हूँ। तो फिर अगर मैं ये वेस्ट, खासकर आज जो हमने वेस्ट थॉट्स की बात की है, और साथ ही व्हाट इज पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स हैं क्या, क्यों हम पॉजिटिव थॉट्स नहीं क्रिएट कर पाते, सिचुएशन कोई भी हो हमें कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी मिल जाएगी। जैसे हम पॉजिटिव सिचुएशंस में नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं, वैसे ही हंस की तरह हम क्यों ना हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढें और उसी के साथ स्टिक करें, वो हम खुद क्रिएट करें, ये प्रयास करके देखें। क्योंकि ये हम पूरी जो श्रृंखला है उन स्किल्स को सीख रहे हैं, लाइफ स्किल्स का हिस्सा है इस तरह से अपने थॉट्स के साथ जीना। कोई बात मन में है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे और बात करेंगे। आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे थके हुए मुसाफिर को देखा है जो अपनी दोपहरी में किसी अनजान शहर में भटक रहा हो? उसके पैर छालों से भर चुके हैं, गला सूख रहा है और वह हर दरवाजे पर जाकर खटखटाता है कि क्या मुझे यहाँ दो पल की छांव या ठहरने की जगह मिल सकती है? लेकिन दरवाजे के उसे यही जवाब मिलता है कि यहाँ जगह नहीं है, आगे बढ़ो। कोई भी उसे अपने यहाँ स्थायी ठिकाना देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि पराई सराय कभी किसी का अपना घर नहीं बन सकती। हमारा यह जो आत्मा है, हमारी यह जो आत्मा है, यह भी जन्म जन्मांतरों से इस संसार की गलियों में एक सच्चे और स्थायी ठिकाने की तलाश में भटक रही है। हम धन में, मकानों में, रिश्तों में और पदों में ठहरना चाहते हैं, लेकिन हर जगह से अंत में खाली हाथ ही लौटते हैं। कबीर साहब आज हमें हमारी इसी भीतरी बेचैनी का असली कारण और एकमात्र स्थायी ठिकाने का पता बता रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। सबको बुझत मैं फिरो, रहन कहे नहीं कोई, प्रीति न जोड़ी राम सू, रहन कहाँ ते होई। सबको बुझत मैं फिरो, रहन कहे नहीं कोई,

श्रोताओं, कबीर साहब जीवन की शाश्वत प्यास और उसकी लाचारी को बयां करते हुए कहते हैं, सबको बूझत मैं फिरो, मैं संसार के सारे पंडितों, ज्ञानियों, सांसारिक मित्रों और रिश्तेदारों से बूझत मैं फिरो, यानी बार बार पूछता फिर रहा हूँ कि इस मन को चैन कहाँ मिलेगा, मेरे आत्मा को सच्चा विश्राम कहाँ प्राप्त होगा, रहन कहे नहीं कोई, पर अफसोस कि कोई भी मुझे रहन यानी सदा के लिए ठहरने, टिकने और परम शांति पाने का कोई पक्का ठिकाना नहीं बता रहा है। सब अपने अपने भ्रम में यही उलझे हुए हैं। इस भटकाव की मूल जड़ को अगली पंक्ति में उजागर करते हुए कबीर कहते हैं, प्रीति न जोड़ी राम सू, हे जीव, तूने दुनिया के न जाने कितने नश्वर लोगों और सांसारिक चीजों से तो दिल लगा लिया, लेकिन

0: जो सबका मूल आधार है, उस निराकार राम से तूने कभी कोई सच्ची प्रीति यानी गहरा आंतरिक प्रेम जोड़ा ही नहीं, रहन कहाँ ते होई? तो फिर तू ही बता कि तुझे रहना यानी स्थाई विश्राम और शांति कहाँ थे, यानी कहाँ से मिल सकती हैं? जब तक तू अपने मूल से नहीं जुड़ेगा, तब तक तेरी यह भटकन कभी समाप्त नहीं हो सकती। यह दोहा अधिष्ठान और भक्ति योग का महासिद्धांत है। उपनिषदों में कहा गया है, आनंदो ब्रह्मोति व्यंजनात्, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। जो चीज खुद अपनी जगह पर टिकी हुई नहीं है, वह किसी दूसरे को क्या सहारा देगी? रहन का अर्थ केवल किसी मकान में रहना नहीं, बल्कि चेतना का अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाना है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक मनुष्य उस अविनाशी ब्रह्म से प्रेम का धागा नहीं बांधता, तब तक वह चाहे जितने स्वर्ग या तीर्थ घूम लें, वह आध्यात्मिक रूप से बेघर ही रहेगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ को रोककर खुद से पूछिए कि हम किस चीज में सुकून तलाश कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े मकान बना लिए, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन क्या हमारा मन एक पल के लिए भी शांत हो पाता है? हम बाहर से तो अपने घरों में बैठे हैं, पर भीतर से आज भी बेघर और अशांत भटक रहे हैं। आज कोशिश कीजिए अपने इस भटकाव को विराम देने की। इस संसार की नश्वर चीजों से अपनी उम्मीदें हटाकर उस राम नाम में अपना सच्चा नाता जोड़िए। जब आपका प्रेम उस शाश्वत परमात्मा से जुड़ जाएगा, तो आपको अपने ही भीतर वह परम धाम मिल जाएगा, जहाँ न कोई भय है, न कोई चिंता, और केवल अखंड शांति का साम्राज्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मनभावन 90.8 FM प्रस्तुत योग सूत्र विवेचन माला, अध्यात्म, मनशांति आणि जीवन दर्शन यांचा सुरेख संगम, श्रीमद भगवत गीतेच्या संदर्भातून पातंजल योग दर्शनाचा सखोल प्रवास, पातंजल योग दर्शन अर्थात मनाचे शास्त्र या प्राध्यापक भगवत भरंबे लिखित ग्रंथाचं क्रमशः वाचन, वाचक स्वर योगाचार्य डॉक्टर देवानंद सोनार, संचालक सोहम योग अँड नॅचरोपॅथी, KC सोसायटी संचलित मूज जेठा महाविद्यालय जळगाव। ऐकायला विसरू नका 1 जानेवारी 2026 पासून दररोज सकाळी 8 वाजता आणि पुनःप्रसारण दुपारी 4 वाजता योग सूत्र विवेचन माला आपल्या रेडिओ मनभावन 90.8 FM वर। ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: एपिसोड क्रमांक 66, वात भागता। ध्यान ही गोट अशी गोट जिना करम कोबांशी संबंध नाही, जिना अंधी श्रद्धाशी संबंध नाही, तो गलत ध्यान करणं हाऊ ध्यानधारींना दोष, गलती करणारा दोष, ध्यानजे देव दोष देव तरी कसा? बुद्धिवाद बुद्धिवान सुद्धा राज सत्यवान, पलगडी विचार त्यांना म्हणणं लोक कल्याणना, चांगला रस्ते लावाना, लोकेसना प्रगतीना, लोकेसले संस्कारी बनावाना, म्हणजे आखो नवाई थाईन बुद्धी शोधक नशील, दिनपर दिन भक्कम वत जास, आणि तो धडस रस्ता अष्टशील ना, तो जो घरी देस लटूमटून आयसो आराम आणि वेगळी उत्थळ जिंदगी, तो त्याग करस गादी तक्क्याना आणि बठ्ठा सुख वस्तूसना, त्यानं मन रमाले लागस निसर्ग मजार साधापण थाई, श्रीमंतीना डांबराटपणा मिळावानी इच्छा झास मरी, चटक मटक सटर फटर खावाना मोहिवतनी त्याले, त्या बठ्ठा सटर फटर राहतस नावले, आपला आश्रम मधील उत्साह विचारेसनी तो आखी देश जन लोकेसले सत्य थाई जगाने रीत, जे मराव नाही कदय असं तत्वज्ञान लिखणारा तो मोरक्या म्हणावस, त्यांना ठाय राहत नाही मोठायकी, खुदले मेरा वाणी।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं

0: जीवन को जीने के लिए जो हमें नहीं मालूम थे और शायद इसीलिए हमारा जीवन इतना खाली था। अपने विचारों की ताकत को समझा कि कितने पावरफुल हैं हमारे थॉट्स और कितनी तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। सबसे पावरफुल और डैमेजिंग थॉट्स, जो टॉक्सिक थॉट्स जिनका हम देखते हैं, उनका हमें पता चल जाता है कि किस तरह से, चाहे वो गुस्सा है, नफरत है या ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। और दूसरी तरफ देखें तो हमारे साथ पॉजिटिव थॉट्स हैं, राइट थॉट्स हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं। हमारे साथ जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी दोनों हैं, उनसे बात करते हैं इस थॉट पावर के बारे में। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, जो डिफरेंट तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उनको हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है, अभी बात हमने करनी है राइट थॉट्स और एलिवेटेड थॉट्स। व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय राइट थॉट्स?
1: सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को मुश्किल लगता है, परंतु एक आम व्यक्ति भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि परिस्थिति जैसी है वैसी ही हमें देखनी चाहिए। म्यूजियम में जब हम जाते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में नहीं, कोई मोटा दिखता है, दुबला दिखता है, ऊंचा दिखता है तो हम हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता है। परंतु सचमुच यही हम अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ कर रहे हैं, परिस्थितियों को विकृत रूप दे रहे हैं। ऐसा तो कम से कम नहीं करना चाहिए। परिस्थिति जैसी है वैसी ही देखे। करीब 9 अलग अलग प्रकार के मिरर्स में हम अपने आप को देखते हैं। इसको कहेंगे रॉन्ग थॉट्स। उस रॉन्ग थॉट्स को समझ लेंगे तो फिर राइट थिंकिंग करना भी सहज होगा।
0: तो मतलब किस तरह से जो है वो हम अपने जो पूरी सिचुएशंस हैं उनको देखें। इनफैक्ट जैसे शिवानी, जब पिछली बार बात हुई थी कि पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं, कैसे क्रिएट किया जाए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो क्रिएट नहीं कर पाते। यू नो, समझ भी रहे हैं क्योंकि फील गुड के साथ हमने जोड़ा था कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव थॉट और अ नेगेटिव थॉट, लेकिन वो हो नहीं पा रहा प्रैक्टिकली। यहाँ बैठ के फॉर्मूला की तरह बात करें तो लगता है कि ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे सिचुएशंस में आते हैं, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट।
2: छोटी सी एक्सरसाइज करके देखें। एक, कुछ समय के लिए अपने आप को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से बचा के रखें। अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, टू मच ऑफ न्यूज इन द टेलीविजन, बहुत सारे विजुअल्स एंड ऑडियो जो हम नेगेटिव भर रहे हैं, ये हमारी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो कुछ दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करें और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भरना शुरू करें। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के 130 कंट्रीज में 8500 से ऊपर सेंटर्स हैं। इतने सेंटर्स क्यों चाहिए? हर शहर में हम जहाँ भी रहते हैं विद इन 5 to 6 किलोमीटर्स एक सेंटर है। ये किस लिए चाहिए? ताकि सभी भाई बहनें वहाँ पर आकर आधे घंटे के लिए, चाहे सुबह चाहे शाम, प्रेफरेबली सुबह, परमात्मा का वो ज्ञान लेते हैं, विच इज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ प्योर पॉजिटिव एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया कि सुबह सुबह अखबार रेडियो टेलीविजन की बजाय सुबह सुबह ज्ञान लेना शुरू किया। इतना सा परिवर्तन, पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल होने लगा। जो भोजन खाएंगे वही एनर्जी क्रिएट होगी। तो एक तो ये ट्राई करें कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्टॉप, ट्राई टू क्रिएट कुछ एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले। दूसरा, सारा दिन कॉन्शियस अटेंशन। और तीसरा, जैसे पहले भी गिरीश भाई ने कहा, लिखो, लिख दे ये नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आ रही है, लेट्स से ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं करने की भी कोशिश करता हूँ ना, लोग इसमें ऑब्स्टिकल डालते हैं, यू नो द होल सीरीज, राइट इट डाउन और बैठ कर उसका पॉजिटिव लिखे कि इस सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव क्या सोचना है। इट्स लाइक अ चाइल्ड लर्निंग टू राइट एंड रीड, नाउ लर्निंग टू थिंक। हमने कभी राइट सोचना ये नहीं सीखा था। एक बच्चे की तरह हमें ABCD से इसको स्टार्ट करना होगा। तो लिखें, उस नेगेटिव को लिखें, और फिर किसी और को अगर समझाते तो क्या पॉजिटिव समझाते उस समय, तो अपने आप को वो पॉजिटिव समझाएं, उसको लिखें। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत जल्दी इट विल बिकम अ नेचुरल प्रोसेस।
1: एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा।
0: डॉक्टर पटेल, आपने कहा कि कई तरह के राइट थॉट्स हैं, अगर पॉजिटिव हम नहीं भी क्रिएट कर पाए, आपने हमें थोड़ी सी सहूलियत दी थी कि जो भी सिचुएशन है उसको वैसे ही देखें, लेकिन शायद हम भी अवेयर नहीं है कि हम कौन से वो 9 मिरर्स लगाकर हैं, वो हमारे साथ अगर आप शेयर करें।
1: सबसे पहला तो है कि मैग्नीफाइंग मिरर, कि परिस्थिति है 20% प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम 90% बना देते हैं,
0: हाइपर हो जाते हैं जो,
1: तो मैग्नीफाइंग ना करें। हम ये पहले ही जज करें थोड़े डिटैच होकर कि ये समस्या है, परंतु कितनी है, 10% समस्या है, तो 10% ही मुझे सोचना है, उसको 15% भी नहीं करना है। ये मैग्नीफाइंग भी हम खत्म कर दे तो बहुत बड़ा फायदा होगा।
0: वेरी ट्रू। यू नो, बच्चा का रिजल्ट वहां से स्कूल से कुछ आ गई, एक कॉल आ गई, और भाई के पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ कह दिया, किसी और चीज का
1: इश्यू आउट ऑफ
0: हस्बैंड के बारे में कुछ पता चल गया, छोटा सा एक
2: सीख, जैसे भाई साहब ने कहा ना, मेकिंग अ बिग इश्यू आउट ऑफ इट। जब कोई और एक बड़ा इश्यू बना रहा होता है ना, हमें दिखाई दे रहा होता है, देखो बात तो इतनी सी है और इसको ये क्या बना रहे हैं, तो डिटैच होकर जब देखते हैं, हमें क्लियर दिखाई देता परिस्थिति इतनी है, इसको ये देखो कितना बड़ा बना रहे हैं। अब सिर्फ वो चीज अपने में देखनी है, दूसरे को तो कहना इजी है कि बात तो बहुत छोटी है, आप उसको बहुत बड़ा बना रहे हो, ये बहुत कॉमन हमें दिखाई देता है आज। अब सिर्फ जो औरों के अंदर दिखाई देता है, उसको अपने अंदर देखना है कि कैसे हम छोटी बात को कितना बढ़ाते।
0: तो जब भी हमें लगे कुछ बड़ा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो गया, वी शुड स्टॉप
1: एवरीथिंग। जो भी हमारे में थोड़ा भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, सोचे कि भी मैं मैग्नीफाइंग तो नहीं कर रहा हूँ, सचमुच परिस्थिति कितनी है, बस उतना ही उसे इम्पोर्टेंस देना है, ज्यादा नहीं देना है। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, कि व्यक्ति जो है परिस्थिति वो एक्सट्रीम में सोचता है, उसके लिए समस्या ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है, परंतु जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट इज डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। एक आपको उदाहरण दूंगा, एक डॉक्टर का बच्चा 10वीं कक्षा में था, तो उसके फादर ने कहा बेटे मेडिकल में एडमिशन चाहिए, मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो 95% होने चाहिए। उसने मेहनत तो की, परंतु अनफॉर्चुनेटली उसके 88% आए। तो पिताजी ने क्या क्या सुनाया उसे कि बस मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अभी तुम कोई काम के नहीं रहे, कम से कम 90 तो आने ही चाहिए थे, मैं किसको मुंह नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे बेटे के 88% ही आए, ऐसे एक दो घंटा खूब सुनाया। तो बच्चा एकदम साइलेंस में चला गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उसको शॉक लगा है कि कम परसेंटेज आए, हमने भी उसको डांटा, लेकिन सच मानिए 2 दिन के बाद वो पागल हो गया। आज भी वो पागल है, कई साइकेट्रिस्ट ने उसका इलाज किया है, मैंने भी उसका इलाज किया, वो ठीक नहीं होता है। भले एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, परंतु फिर भी
0: इसके लिए वो माँ बाप का एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होगा।
2: नहीं, लेकिन ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन हमें ये मैग्नीट्यूड तो दिखा सकता है ना कि हमारी जो ये बातें हैं जो हम कह देते हैं उस समय, वो चलो हमारे बच्चों पर कितना इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, हर बच्चा इस एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा, लेकिन कुछ तो डैमेज हर एक का हो रहा होगा जब इस तरह से बोला।
1: सुसाइड करते हैं कई बार, तो ये ऑल और नन अप्रोच का ही वो हिस्सा है। अब इसमें राइट थिंकिंग क्या होता, अगर वो बच्चे को ये कहा जाता कि बेटा हमारे कम से कम 90 का एक्सपेक्टेशन था, तुम्हारे 88% आए, अभी चलो देखते हैं, प्रॉब्लम इज देयर डेफिनेटली, लेकिन आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, आप अपनी स्टडी टेक्निक को कैसे इम्प्रूव कर सकते थे, हम आपको क्या मदद कर सकते थे, ये सब बातों के बारे में अच्छे से सोचा होता, कोई ठीक से प्लान बनाया होता, तो HSC में जरूर उसके 92 या 95 आते। तो दिस इज राइट थिंकिंग ऑफ दैट नो ऑल और नन अप्रोच,
0: इनफैक्ट लुकिंग एट द सिचुएशन इन द रियल सेंस
2: एंड एक्चुअली ट्राई टू मेक द सिचुएशन स्मॉलर। ये भी करो कि कई बार अगर, क्योंकि हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है बात तो हमारे लिए बहुत बड़ी, अगर कोई और भी हमें कहे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कहेंगे आपको क्या पता, ये बात तो मेरे सामने आई है ना।
0: कई बार ऐसा भी हो रहा था कि अगर मैंने अभी नहीं कहा तो इनको समझ नहीं आएगा, यू नो, लाइक वी शुड हिट इट व्हेन इट्स हॉट, दैट्स व्हाट वी से।
2: एम हैज टू बी कि कितनी भी बड़ी हो, हमें उसको बिल्कुल बिल्कुल छोटा करना है, बिल्कुल छोटा करना है। और ये एक गेम है, यू नो, जितना करते जाओगे यू विल रियलाइज कि एक्चुअली बातें तो कुछ भी नहीं होती हैं, हम उनके बारे में सोच सोच के, बोल बोल के, आपस में डिस्कस करके उसको कितना बड़ा बनाते हैं। टेक इट लाइक अ गेम, एक गेम को खेलो कि आपके सामने एक चीज़ आई है जो बहुत बड़ी है, आपको उसको एकदम छोटा करना है। एवरीबडी नोज हाउ टू डू इट, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू डू इट।
0: Why we don't do it?
2: See, again, power नहीं है ना, हम बहुत डर जाते हैं एकदम से। अभी इस केस में भी डर गए ना, कितने सारे thoughts आ गए होंगे, fear of future, क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, मैं लोगों को क्या कहूंगा, मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना, उसका तो बच्चा डॉक्टर बन गया। Look at the series of thoughts that will come. उस समय ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ सोच लिया, तो जो important था वो तो सोचा ही नहीं, और इतने सारे थॉट्स जितने बनते, एंड दैट्स व्हाई वी से सिचुएशन उतनी ही बड़ी है जितने आपके थॉट्स उसको बनाते हैं। और कुछ भी नहीं है. जितना आप इससे थॉट क्रिएट करेंगे क्या होगा कैसे होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट द सिचुएशन इज वेरी वेरी बिग. इट विल सीम टू यू कि इससे बुरा तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं
0: सकता. हम वो बना ही देते हैं फिर फाइनली वो बनी जाती है
2: क्योंकि हम उसके साथ इतने सारी चीजें अटैच कर रहे हैं ना. लोग क्या कहेंगे, इसका फ्यूचर क्या, इसकी शादी नहीं होगी, आगे करियर, मतलब सो मेनी थिंग्स वी विल अटैच. तो बात तो बड़ी लगेगी उस टाइम. अब हमें डिसाइड करना है उस सिचुएशन में कैसा सोचेंगे तो सिचुएशन एकदम उतनी छोटी हो जाएगी.
1: ये भी पक्का कर ले, बस ये राइट थिंकिंग करना है ना, सही मिरर में अपने आप को देखना है, ऑल और नन के मिरर में बिल्कुल नहीं देखना है. तीसरी बात है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ होता है तो तुरंत हम कुछ निर्णय पर आ जाते बस ऐसे ही है.
0: और अब भी लेना डिसीजन, अब भी लेना, अब भी करना है. यू नो ये जो एक हमारे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं रह गया कि अभी मैंने सिचुएशन में डिसीजन नहीं लिया तो कुछ कुछ गलत हो जाएगा. ये
1: व्यक्ति के बारे में भी हम वी जंप टू कंक्लूजन. एक कंपनी में प्रेसिडेंट थे, उस कंपनी का यूनियन लीडर सवेरे सवेरे उन्हें मिलने आया. सेक्रेटरी को आके कहा कि साहब को मिलना है. सोचा अरे सवेरे सवेरे यूनियन लीडर मतलब बहुत सारी डिमांड लेकर के आया होगा, बस समस्या होगी, अभी मॉर्निंग में नहीं चाहिए. उसको कहा कि कहो कि साहब अभी बिजी है कुछ देर के बाद आना. फिर से आया, सोचा जरूर इसकी बहुत डिमांड होगी. कहा नहीं नहीं थोड़ी देर के बाद आना, अभी साहब मीटिंग में बिजी है. ऐसे उस दिन वो 5 बार आया लेकिन कोई ना कोई बहाना बता करके उसे वापस भेज दिया, क्योंकि जंप टू कंक्लूजन दैट यूनियन लीडर मीन्स प्रॉब्लम्स. फिर 7 दिन तक वो दिखाई नहीं दिया, 8वें दिन रास्ते में ही मिल गया. तो उन्होंने सोचा अभी तो पूछूं, अब तक तो उसकी डिमांड शायद बहुत कम हो गई होगी, अब उसको पूछता हूँ और सोल्यूशन लाता हूँ. तो कहा भैया क्या उस दिन तो आए थे, क्या प्रॉब्लम था? उसने कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया. कहते नहीं नहीं बताओ कुछ तो होगा, मैं तुझे मदद कर सकता हूँ. कहा नहीं नहीं साहब कुछ नहीं कर सकते. कहा नहीं कुछ तो कर सकते, बोलो क्या था. कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया. कहते क्या हुआ? कहते साहब मेरे बेटे के मैरिज थे, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया था, कल ही मैरिज सेरेमनी पूरी हो गई, आज मैं काम पर आ गया, वो तो हो गया. तो देखो जंपिंग टू कंक्लूजन कि भी यूनियन लीडर मींस वो डिमांड लेकर के आया होगा, तो एक बहुत अच्छा सा मौका गवा दिया.
0: तो हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा डेवलप
1: होता उससे. तो ऐसा कभी नहीं करना है. कुछ भी हो, नेवर जंप टू कंक्लूजन.
0: ओह यस, सो मेनी टाइम्स वी डू दैट.
1: हर परिस्थिति तो एक है, तो बस एनालिसिस करना है क्या बात है, अच्छे से एनालिसिस करूं और फिर सोचूं कि क्या करूं.
0: और पहले सुन तो ले, पहले हम देख तो नहीं कि हाँ, है क्या है.
1: ठीक से जो हम
2: सुन
1: कर
2: रहे हैं हम उसको भी नहीं ले रहे होते, हम फिर भी कुछ और सोच रहे होते हैं,
0: पहले तय कर रहे होते हैं.
2: कोई अगर हमसे अच्छी तरह से भी बात कर रहा है उसके पीछे भी हम सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या, इसको क्या चाहिए मेरे से, ये मेरे से इस तरह से बात कर रहा है. वैसे यू नो सो मच, दिस इज ऑल्सो जम्पिंग टू सो मेनी कंक्लूजन्स. और उसकी वजह से वो जो अच्छी सीन भी आपके सामने आई थी उसमें भी आपकी थिंकिंग किस तरफ चली गई, इट वेंट टुवर्ड्स रॉन्ग थिंकिंग. सो सिचुएशंस आर पॉजिटिव, लेकिन हमें आदत पड़ गई है उस पॉजिटिव सिचुएशन में भी कोई ना कोई इस तरह की रॉन्ग थॉट क्रिएट करने की.
1: जब भी थॉट है तभी सोचना है कि इसमें से कोई तो मैं नहीं कर रहा हूँ. चौथा है ऑलवेज मेंटालिटी.
0: एक सेकंड पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं कि पहला था मैग्नीफाई, ऑल और नन, मतलब या तो मुझे सब कुछ मिले या कुछ नहीं. एंड थर्ड इज जंपिंग टू कंक्लूजन. फोर्थ हम आते हैं,
1: फोर्थ इज ऑलवेज मेंटालिटी.
0: अच्छा.
1: भी कुछ हुआ हम समझते सदैव मेरे साथ ही होता है.
0: अच्छा, ऑलवेज मी.
1: हाँ, ऑलवेज मी. कि जब अगर बॉस आपको डांट दे तो सोचते बॉस ऑलवेज मुझे ही डांटता है. या तो मुझे ही सदैव डांट पड़ती है.
0: मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है. हाँ. मेरे साथ जिंदगी में ये मेरे अपनों के साथ होता रहता है. मेरे बच्चों के साथ ही होता है. मेरे साथ जिंदगी में ये चलता है.
1: मेरे साथ सदैव बुरा होता है.
2: विक्टिम फीलिंग भी आ
1: जाती है. बिल्कुल,
2: सो मच ऑफ अ विक्टिम फीलिंग कि ये मेरे साथ ही हो रहा है सारा कुछ.
0: लेकिन अगर ये होता जा रहा हो तो
1: नहीं, तब भी डिटैच हो गया. अगर सचमुच नहीं, कितना भी बुरा होता आप सोचेंगे ना, कुछ बातें अच्छी भी हुई है. भले कुछ बुरी भी हुई है लेकिन 20% 25% अच्छी बातें भी हुई है. उसका भी एक लिस्ट रखना चाहिए कि भी अच्छी बातें हुई है. हो सकता है भी मास में एक बार कुछ हुआ, 6 मास में एक बार हुआ, सदैव नहीं होता है. ये भी इसमें राइट थिंकिंग करना चाहिए कि भले मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, औरों के साथ और प्रॉब्लम भी होते हैं ना, क्योंकि मुझे अपना ही दिखाई देता है इसलिए मैं सोचता हूँ कि आई एम ओनली सफरिंग. तो इस प्रकार से जो ऑलवेज मेंटालिटी है उस पर भी विजय प्राप्त करना जरूरी है.
2: एक बार हम एक काउंसलर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा लोग आते हैं इतनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं अपनी और उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद लगता है मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उससे पहले हम अपनी इतनी सी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाकर बैठे थे। एक बार हम ऐसे एक ग्रुप में बैठे और हर एक से पूछा आपके जीवन में चिंता का कारण क्या है, एवरीवन जस्ट शेयर व्हाट्स द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस। तो एक कपल था, उन्होंने कहा हमारे बेटे को चश्मा लग गया है, बहुत यंग एज में, छोटा सा था, अबाउट 7-8 ईयर्स ओल्ड, कि हमारे बेटे को चश्मा लग गया है, ये सोच सोच के तो हमें बहुत चिंता हो रही है। तो साथ में किसी और ने कहा कोई और प्रॉब्लम नहीं आई है ना सामने अभी, तो इसी बात को लेकर सी मतलब एक मेंटालिटी बन गई है कि कोई ना कोई बात को लेकर तो मुझे करनी ही है वो थॉट। तो अब जैसे ही अब अगर ये थॉट है कि मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, जिस दिन कोई और बड़ी बात आ जाएगी ये बात कोई बात नहीं लगेगी। और यही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हर सीन में पॉजिटिव, तो कितनी भी बड़ी बात आ जाएगी हमें वो बात वो नहीं लगेगी। इट हैज बिकम आर यू नो पर्सनैलिटी, आर नेचर टू थिंक ओनली ऑन द वरी एंग्जाइटी नेगेटिव साइड। इसीलिए वो हर टाइम लगता है कि आई एम द विक्टिम, मेरे साथ थोड़ा सा भी कुछ मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ ही ऐसा होता है। दिस इज अ वेरी डीप संस्कार जो हमारा बनता जा रहा है कि हर टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, एंड हर टाइम जो मेरे साथ बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं
0: वो मैं देखती
2: हूं, दैट इज इग्नोर्ड।
0: क्यों नहीं, क्यों मुझे विक्टिम बनना आसान लगता है क्या? विक्टिम बनते ही जिम्मेदारी किसी और की हो जाती है, ऐसा है,
2: और उदास फील करना जस्टिफाइड हो जाता है।
0: पर हम उदास, अच्छा उदास तो हम फील, सी हम उदास फील तो नहीं करना चाहते ना, लेकिन हम फील कर रहे हैं,
2: उदास फील कर रहे हैं। अब हमें कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर हम उसकी ब्लेम डालते हैं,
1: जस्टिफिकेशन
2: है ना कि सिचुएशन ही मेरे साथ हर बार ऐसी हो रही है, हाउ कैन आई बी हैप्पी, दैट इज द थिंग। जैसे ही कोई रीजन मिल गया ब्लेम करने के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, एंड आई टेल माई सेल्फ ये ठीक है आप जैसा फील कर रहे हो

0: लोगों को लेबल करते हैं। आपके अंडर में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से आप लेबल करते हैं कि ये स्मार्ट है, ये बिल्कुल गलतियां करता रहता है। और जब आप लेबल करते हैं तो इमीडिएटली वो आ जाते हैं कि इसने किया, गलत ही किया होगा, वो भी रॉन्ग है। कभी भी लेबल किसी को नहीं करो।
1: जैसे सपोज कोई टाइम पर नहीं आता तो हम कहते हैं ये तो है ही लेट लतीफ, ये तो हमेशा ही लेट आएगा, इसको कितना भी बोल दो ये नहीं। सो दिस इज नो दैट पर्सन माइट बी सिंसियरली ट्राइंग टू कम ऑन टाइम, नाउ ही जस्ट नीड्स द राइट एनर्जी। कोई ये
0: और ही
1: है
0: मेट कम ऑन टाइम, सपोज वो 50% टाइम पे आने लगे तो भी आप कहेंगे कि तो लेट ही आता है,
2: क्योंकि हमने अपने मन में उसको
0: वो
2: लेबल
1: लेबल
2: लगा
1: लगा
2: दिया।
1: दिया उसको वो।
2: अच्छा, तो पर उसे कहना तो चाहिए, कहा तो जा
0: हाँ
2: सकता है।
0: हाँ एक बार लेट आया ठीक है कि
2: सी
0: तुम लेट आते
2: रिकॉग्नाइज
0: हो।
2: हमने करा, रिकॉग्नाइज करके हमने रजिस्टर किया, तो रजिस्टर करके हमारे पास तो रहती है वो वीकनेस।
1: जैसे हम लेबल कर देते हैं ना, इट फील्स के ये ऐसा ही है,
2: अब
1: मतलब देयर इज नो मार्जिन टू
2: चेंज।
1: चेंज।
0: तो
1: वो है
0: ना
1: कि किसी के ऊपर जैसे ना स्टैंप
2: स्टैम्प
1: लगा दी कि ये तो है ही ऐसा, एंड फिर वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं, वो लेबल और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर होता है और सभी फिर यही लेबल से वर्क करते हैं। आप उस व्यक्ति को उस लेबल के थ्रू देखना शुरू करते हो, यू नो, नहीं ये तो है ही ऐसा। तो इवन इफ ही इज ट्राइंग टू चेंज, अगर कोई टाइम पे आएगा ना, आज कहेंगे बाय चांस आज टाइम पर आ गया था, कल नहीं आएगा ये टाइम पर, इतना बिलीफ सिस्टम वो स्ट्रांग हो जाता है। ये एक दो दिन की बात है, अच्छा 4 दिन वो टाइम पर आ रहा है, देखते हैं कब
2: कब
1: तक
2: तक
1: चलता है
2: रहेगा।
1: इसका ये चेंज, क्योंकि मेरा लेबल इतना स्ट्रांग है कि वो तो टाइम पर नहीं आ सकता है। सो दैट्स द एनर्जी देन बी ट्रांसमिट टू हिम।
0: वो नेगेटिव एनर्जी हम दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है फिर भी शायद तो
1: और
0: नहीं
1: इसको
0: कर।
1: वर्बल भी कर देते हैं हम, मतलब हम बोल
2: बोलते
1: देते हैं
2: भी
1: एक
2: हैं
1: दूसरे
2: कि
1: को
2: आज
1: उसके।
2: तो सूरज नहीं निकला, सूरज कहाँ से निकला, आज आप टाइम पे कैसे आए, और ये सब कुछ। यस,
0: 7वीं बात है वाई मी एटीट्यूड। वाई मी एटीट्यूड का बहुत ही अच्छा उदाहरण है आर्थर एसे, कि जो विंबलडन में लीगेंड थे, उनको वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, और जब रिटायर हुए उसके कुछ समय के बाद उनको कैंसर हुआ। तो एक उनके फैन ने लिखा कि भी कैसी दुखद बात है कि आप इतने फेमस व्यक्ति थे, आप इतने हाई पोजीशन पर पहुंचे थे, फिर भी भगवान ने आपको कैंसर दे दिया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि भी 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें से करीब 50 लाख ही है या तो 5 लाख ही उसको अच्छे से सीख पाते हैं। उसमें से जो प्रोफेशनल है 50 हजार ही बनते हैं, उसमें से 50 ही विंबलडन तक पहुंचते हैं, उसमें से 8 ही है जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, 4 ही सेमीफाइनल में होते हैं, 2 ही फाइनल में पहुंचते हैं, और अंत में 1 ही चैंपियन ऑफ द चैंपियन डिक्लेयर होता है। जब मेरे हाथ में कप था और मेरा नाम चैंपियन ऑफ द चैंपियन में दिया गया था, तब मैंने भगवान को यह नहीं कहा वाई मी। तो आज मुझे बीमारी हुई है तो भी यह नहीं कहना चाहिए वाई मी। तो बस यही बात, इससे बहुत प्रेरणा मिल सकती है। कोई भी समस्या आए कभी यह नहीं कहो वाई मी, यह सोचो कि भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, औरों को और कुछ प्रॉब्लम है।
2: इट्स
0: उल्टा
2: पार्ट ऑफ द प्रोसेस
0: प्रोसेस,
2: एक्चुअली।
0: हाँ उल्टा कहते हैं वाई मी नहीं कहो ट्राई मी लॉर्ड।
2: तो ये हमने 7 तरह की अपने रॉन्ग थॉट्स को, ये दीज आर द रॉन्ग थॉट्स ना,
0: जिस हाँ उसको
2: जिसको
0: रॉन्ग
2: हमने
0: थॉट्स को
2: राइट
0: भी
2: में
0: राइट में
2: कन्वर्ट
0: करना,
2: करना। आपने
0: हरेक
2: कहा
0: को
2: 10 होते हैं।
0: हाँ, और भी 8वां जो है जिसको कहा फ्लाई मेंटेलिटी,
2: ओ भागना।
0: नहीं मक्खी की जैसी मेंटेलिटी।
2: अच्छा अच्छा हाँ
0: कहते भी मक्खी के सामने मिठाई भी रखो और गंदगी भी रखो तो कहाँ बैठेगी, गंदगी पे ही बैठेगी। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है कि भी जीवन में अच्छी भी बातें हैं बुरी भी बातें हैं। जिनके पास फ्लाई मेंटेलिटी वो व्यक्ति बुरे पे ही बैठता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। बस ये भी सोचना चाहिए कि भी मेरे में फ्लाई मेंटेलिटी तो नहीं है, बस दोनों चीजें साथ साथ है, मुझे अच्छे पे ही बैठना है। 9वीं बात है जिसको कहते हैं नॉटिंग। नॉटिंग मतलब क्या है कि भी कोई चीज को हम फोर्सिबली भूलने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि भी उनको पढ़ाई करनी है परंतु दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, या तो आप पूजा भी कर रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, तो आपका ध्यान कंटिन्यूअस वो टीवी के प्रति है। आप फोर्सिबली उसको भूलने की कोशिश करते हैं, भूल नहीं पाते, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, उल्टा टीवी का प्रोग्राम और क्लियरली आपको सुनाई देता है। तो ये नॉटिंग भी नहीं करे। अगर नॉटिंग होता है तो ये सोचो कि टीवी को भूलना नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे जो कंसंट्रेशन पढ़ाई में देना है। अगर पढ़ाई में मैं कंसंट्रेट हो गया ऑटोमेटिकली टीवी से ध्यान चला जाएगा। मेडिटेशन कर रहा हूँ मुझे मेडिटेशन में कंसंट्रेट करना है, ऑटोमेटिक

0: मेरा ध्यान है वह वहां से हट जाएगा,
1: क्योंकि वो तो वहां एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, उसकी एग्जिस्टेंस को तो आप डिनाई नहीं कर सकते।
0: हाँ, लेकिन उसको हमें फोर्सिबली नहीं भूलना।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, इट्स नॉट पॉसिबल। सी, यूजुअली जब आप पढ़ रहे हैं और टीवी चल रहा है, मन वहां है, तो आपका मन वहीं जाता ही है,
2: इसलिए क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा इंटरेस्ट करती है। माइंड कहाँ जाएगा, जो दोनों में से आपको चीजें ज्यादा इंटरेस्ट करेंगी। यही अगर आप टीवी देख रहे हैं, सपोज आप टीवी देख रहे हैं और एक्चुअली कोई आपको बुला रहा है कि पढ़ लो, शोर भी मचा रहा है, आ जाओ पढ़ लो, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे क्योंकि आपका पूरा इंटरेस्ट किस में है, टीवी देखने में। प्रोवाइडेड यू आर डूइंग समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग यू, आपको दूसरी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसी में हमें अपने आप की फिर थॉट्स को चेंज करनी है कि वहाँ एक चीज चल रही है, यहाँ एक चीज चल रही है, मेरे लिए इस समय कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। फिर अपने आप, इट्स सेड के वेर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो देयर। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी अटेंशन कहाँ जाए, हमारी अटेंशन एक्चुअली वहां जाती है तो फिर एनर्जी भी उसी तरफ जाएगी। लेट मी फोकस कि ये मुझे ये करना है, नहीं हो रहा है, माइट एज वेल गो एंड सिट देयर। लेकिन ये जो संघर्ष चलता रहेगा, इट वॉन्ट हैपन। एंड वो सिर्फ इस चीजों में नहीं, सारा दिन में बहुत सारी चीजों में चल रहा है, ऑफिस में भी काम मुझे अपने पर करना है, इवन वट एवर वर्क आई एम डूइंग, लेकिन मेरा ज्यादा ध्यान दूसरी चीजों में जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, देन आई एम ट्राइंग टू फोर्सफुली टेक माई सेल्फ बैक फ्रॉम देयर। द अदर वे अराउंड, मुझे क्या करना है एंड आई फोकस माई एनर्जी टोटली ऑन दैट, अपने आप अटेंशन वहां से हटेगा। मतलब वो कुछ और चीज भूलने की बजाय इसको याद करना है। जैसे परमात्मा भी हमें सिखाते कि मुझे गुस्सा नहीं करना, ये नहीं सोचना है, आई एम अ पीसफुल सोल, इस पर अटेंशन रखना है, एनर्जी विल ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड। नहीं तो वो माइंड और भी उसके कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है,
1: जा रहा है तो फिर अटेंशन उधर ही
2: उसी तरफ चला जाता है।
0: और दसवां है डिस्क्वालीफाइंग द गुड। कई बार अच्छी चीजें होती है हमारे जीवन, लेकिन उसको भी हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। एक महिला ने एक दिन बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी तो लोगों ने बहुत उसको प्रेज किया कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी साड़ी। सबको कहते क्या बेकार की साड़ी है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं पहनती हूँ, आज कोई मौका कुछ नहीं मिला तो इसी को पहनना पड़ा, क्योंकि मेरी सास ने प्रेजेंट की थी। तो दिस इज डिस्क्वालीफाइंग द गुड, नो, सो मच गुड वॉज देयर, नो, शी कुड हैव इम्प्रूव हर सेल्फ एस्टीम, औरों को भी अच्छा लगता, शी वुड हैव फेल्ट गुड ऑल्सो अबाउट इट, लेकिन उसको भी भाई सास ने प्रेजेंट की थी कह के सब कुछ वॉश आउट कर दिया,
1: क्योंकि वो एक थॉट के भी आया कहां से, वहां पे रिश्ता ठीक नहीं था,
0: वो जरूरी नहीं था, कोई वो पूछ नहीं रहा था, लेबल भी नहीं लगा था कि किसने प्रेजेंट किया आपको। तो इसलिए जब भी अच्छा होता है रियली उसका हम आनंद ले, अपने स्वमान को बढ़ाए, इवन एंथुजियाज्म को इम्प्रूव करे, अच्छी चीज को भी डिस्क्वालीफाई ना कर दे,
1: जो अच्छा है उसे अच्छा ही अच्छे रूप में ही देखें। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, वक्त का पता नहीं चलता जब हम अपने विचारों के इस ताने बाने में उलझ जाते हैं, लेकिन आज जो बातें समझ में आई कि जो 10 तरह के ऐसे थॉट्स जिन्हें एक्चुअली अगर नेचुरली देखा जाए तो राइट होना चाहिए, बट हम किस मिरर से देखते हैं, आपने कहा कि कौन सा ग्लास लगाकर हम देख रहे हैं और सारी चीजें उल्टी होती जा रही। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच, ओम शांति। आज हमने उन 10 सिचुएशंस को देखा, वो ऐसे थॉट्स जो शायद मैं अवेयर भी नहीं हूँ, मतलब ये चीजें अपने आप होती जाती रही है अभी तक जीवन में, लेकिन थोड़ा सा अगर बैठ कर देखेंगे तो सचमुच, चाहे वो किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को मैग्निफाई करने की बात हो, चाहे एक जो कहा वाई मी ऑलवेज, यू नो, मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ, और जो 10 थॉट्स हमने आज रियलाइज किए हैं, आज देखे हैं, जरा अपने थॉट्स को देखें और कैटेगराइज करें कि इनमें से कौन कौन से इन कैटेगरीज में आते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि इन्हें परिवर्तित कैसे करना है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि ये रॉन्ग है, क्योंकि मेरे दर्द ये मैंने क्रिएट किए, मतलब मेरे दर्द की क्रिएशन भी मैं हूँ, तो अब उसको चेंज कैसे करना है, पॉजिटिविटी और जो पीसफुलनेस या हैप्पीनेस है उसे कैसे क्रिएट करना है, इस पर बात करेंगे आने वाली कड़ी में। आप हमारे साथ रहिएगा, कोशिश करेंगे ये स्किल सीखेंगे कि कैसे रॉन्ग को राइट करना है। आपसे विदा लेते हैं, हम शांति।

समय का चक्र घूमता रहा। हर क्षण पल में, पल घंटों में और सदियों में, युगों में बदलता चला गया और मैं

तटस्थ साक्षी बन उस बदलाव को देखता रहा। मैंने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है, आदर्शों के महान पुतलों को आदर्शों पर जीते और मरते देखा है। वो कलकल वाहिनी धाम नदी तब भी शांत आश्रम के चरणों को धोती हुई आगे बढ़ती थी, वो आज भी उसी तरह चरणामृत से स्मृतियों को संजोए आगे बढ़ रही है। किनारे पर खड़ा वो वटवृक्ष एक योगी की भांति अपनी साधना में लीन बीते हुए समय घटनाओं का मुख दर्शक बन साक्ष्य दे रहा है। वो लाल बंगला जो आज का आश्रम, एक तपस्वी की भांति घोर तपस्या में लीन आंखें मूंदे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल, एक आदर्श, एक मार्गदर्शक बन खड़ा है, जो अपनी मौन भाषा से उस साधक, तपस्वी, आचार्य, फक्कड़ साधु, फकीर के कर्मठता की, ब्रह्मचर्य व्रत की, मातृ प्रेम की कहानी कह रहा है, जो कई पीढ़ियों नस्लों के लिए प्रेरणा बना है। वो है पवनार का परम धाम आश्रम, जहां उस साधक ने अंतिम सांस ली, जिसकी ऊर्जा को आज भी महसूस किया जा सकता है। वो विष्णु सहस्त्र नाम की ध्वनि आज भी हवा में गूंजित है, वहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति को रोमांचित करती है। वहां की सादगी, सरलता, पवित्रता, शुद्धता, मृदुता, वाणी की कोमलता और स्वावलंबन वाली कर्मठता उसी तरह से कायम है जैसे पहले थी। जी हां, मैं समय हूं, कालचक्र, हर युग, हर घटना का साक्षी, जो आपको आज साक्ष्य दे रहा है उस तपस्वी की, जिसे बचपन में दोस्तों ने विनायक, मां ने विनया और गांधी जी ने विनोबा बनाया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आचार्य विनोबा भावे जी की।

प्रेम पंत अहिंसा का। विनोबा जी की जीवन कथा उनके शब्दों में कालिंदी दीदी द्वारा संकलित डॉक्टर पराग सोड़कर द्वारा प्रकाशित पुस्तक की चौथी आवृत्ति 2000 है। इसकी प्रथम आवृत्ति 1985 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये विनोबा जी का आत्मचरित्र नहीं है और अगर लिखना भी चाहे तो वो अनात्म कथा होगी। उनका मानना है कि विनोबा जी ने ऐसी कथा न लिखी और न ही किसी को बताई। हाँ, उन्होंने अपने हजारों प्रवचनों में विषय की गरिमा को देखते हुए समझने के लिए इन दृष्टांतों का प्रयोग जरूर किया है। अपने जीवन में घटित अनेक बातों को सहज रूप से बताया है। उन सभी को मधुमक्खी की भांति पराग कण के रूप में एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना जीवन यात्रा के पदचिन्ह, उनकी विचार दर्शन का प्रत्येक पहलू, इन सब का चित्रण इनमें हो, ऐसी सर्व संग्राहक दृष्टि इसके पीछे नहीं रखी गई है, अपितु ये प्रयास रहा है कि जो प्रसंग, जो कथाएं उन्हीं के शब्दों में मिली, उसे यहां सूत्रबद्ध किया गया है। प्रेम पंत अहिंसेचा, जो मराठी भाषा में प्रकाशित है, जिसमें विनोबा जी की संपूर्ण जीवन कथा जो 5 भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया है। आरंभ, अयुक्त साधना पूर्वकाल, युक्त साधना संकल्प से युक्त, वियुक्त विशेष रूप से युक्त और अंत में मुक्त। आरंभ को विनोबा जी का आत्म अवलोकन कहे तो गलत नहीं होगा, जिसे उन्हीं के शब्दों में संकलित किया गया है, जिसे पढ़कर विनोबा जी की वैचारिक, सामाजिक, तार्किक, दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा मानवतावादी दृष्टि का परिचय मिलता है। उनका मानव के प्रति, जीवन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, साहित्य के प्रति, दर्शन के प्रति, शास्त्र के प्रति जो देखने और समझने का नजरिया है, वही विनया को विनोबा बनाता है, इस संसार से उनकी पहचान कराता है। एक कर्मयोगी महापुरुष, असाधारण व्यक्तित्व के धनी के रूप में।

0: विनोबा जी स्वयं कहते हैं,
1: मैं एक अलग दुनिया का व्यक्ति हूं। मेरी दुनिया भी बिल्कुल अलग है। मेरे पास प्रेम है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उस प्रेम का मैं हर पल अनुभव लेता रहता हूं। मेरे पास राय नहीं, विचार हैं। वे मानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान होता है। विचार स्वतंत्र होते हैं, इन्हें सीमाएं नहीं होती। ये बंधे हुए नहीं होते हैं, इनमें सदैव निरंतर बढ़ोतरी होती है। और जो सज्जनों से विचार परामर्श करने में सहायक होते हैं, उनके विचारों को लिया और दिया जा सकता है। अपने विचारों को स्वयं बदला जा सकता है। इस प्रकार विचारों में बढ़ोतरी होती जाती है, इसका मुझे निरंतर अनुभव होते रहता है। इसलिए मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूं। कोई भी अपने विचार से मुझे सहमत कराए या मेरे विचारों से सहमत होवे, मेरा मानना है कि प्रेम और विचार में जो शक्ति है, वह न किसी संस्था में है, सरकार में है, न कोई विवाद में है, न किसी शास्त्र में, बल्कि शक्ति तो प्रेम और विचार में ही है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मुझसे किसी निश्चित या पक्के राय की अपेक्षा न करें, अपितु विचारों की करें। मैं हर पल हर क्षण बदलने वाला व्यक्ति हूं। कोई भी मुझे अपने विचारों का स्पष्टीकरण देकर उससे सहमत करवाकर गुलाम बनाए, परंतु विचारों से सहमत न करवाकर अगर कोई जंग में भी पछाड़ दे, तो भी कोई मुझ पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। आप अपने विचारों के तर्क दीजिए, मुझे इन विचारों से सहमत करवाइए, फिर देखिए मैं आपकी बात मानता हूं कि नहीं।

0: स्वयं का आत्म अवलोकन करते हुए वे कहते हैं कि
1: मैं सिर्फ व्यक्ति हूं, मेरे माथे पर कोई लेबल नहीं लगा है। मैं किसी संस्था का सभासद नहीं हूं, ना ही किसी राष्ट्रीय पक्ष का स्पर्श। अगर मेरा प्रेम संबंध है तो सिर्फ रचनात्मक संस्थाओं से। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, परंतु शिखा काटकर मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया। कोई मुझे हिंदू मानता है तो बता दूं, मैंने 7-7 बार कुरान को मनोभाव से संपूर्ण पढ़ा और उसका पारायण भी किया, अर्थात मेरे हिंदुत्व की समाप्ति। लोगों के मेरे विचार अच्छे लगते हैं, कारण उसके मूल में करुणा है, प्रेम है, विचार है। विचारों के अलावा दूसरी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा मैंने ली है। मेरे पास विचारों के अलावा दूसरी राय नहीं है। मैं भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी एक राय पर कायम नहीं रहता हूं। जिस राय से सहमत रहता हूं उसे ही प्रकट करता हूं। हर पल कुछ अलग, कुछ नया चिंतन करता हूं। आज मैं कुछ और, कल कुछ और। मुझे अपने बारे में एक बात स्पष्ट करनी है कि कुछ लोग मुझे गांधी जी के विचारों का प्रतिनिधि मानने लगे हैं। इससे गलत और क्या होगा? गांधी जी द्वारा दिए गए जिन कार्यों से मैं सहमत था, जो कार्य मुझे अच्छे लगे, उनको पूरा करने में मेरा संपूर्ण जीवन गया, ये सच है। मगर सिर्फ वही कार्य जो अच्छे लगे और जिन विचारों से मैं सहमत था, वो मुख्य है। गांधी जी की संगत से, विचारों से मुझे बहुत कुछ मिला। जो विचार अच्छे लगे उनका ग्रहण, जो अच्छे नहीं लगे उसका त्याग, और यही वजह है कि मैं आज एक विचारक प्राणी बन गया हूं। गांधी जी ये जानते थे, इसके बावजूद गांधी जी ने मुझे अपना सहकारी माना, क्योंकि वे स्वतंत्रता प्रेमी थे, मुक्तिवादी थे। इसलिए गांधी जी के विचारों का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा भले मेरे मन में थी, किंतु उसे पूरा करने की योग्यता या अधिकार मेरे पास नहीं, और मेरी इच्छा भी नहीं। देश में अनेक विचार प्रवाह कार्य कर रहे थे। मैं जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में होने के कारण जनता का सूक्ष्म निरीक्षण करने का अवसर मिलता रहा है। परिणाम स्वरूप मेरा संबंध जहां जहां से आता, वहां मैं समन्वय का ध्यान रखकर अधिक तटस्थ रहता। मेरा किसी से विवाद नहीं, और ना ही व्यर्थ विरोध करना मेरे रक्त संस्कार में। मेरी स्थिति तो संत तुकाराम के उस वचन जैसी है,
2: विरोधाचे मज न साहे वचन।
1: मैं सुप्रीम सीमेंटिंग फैक्टर हूं। वजह, मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूं। परंतु यह तो हुआ मेरा नकारात्मक, निगेटिव वर्णन। तो सकारात्मक वर्णन ये होगा कि पार्टी में जो सज्जन है, जिन पर मेरा प्रेम है, इसलिए मैं अपने आप को सुप्रीम सीमेंटिंग फैक्टर मानता हूं। उपरोक्त यह सब मेरा व्यक्तिगत वर्णन नहीं। जो व्यक्ति हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया में क्रांति लाने वाले कार्य को करेगा, वह व्यक्ति एक देश के लिए नहीं तो सभी देशों के लिए सीमेंटिक फैक्टर होगा। मैंने लुई पाश्चर का चित्र देखा था। उस चित्र के नीचे एक वाक्य लिखा था, मैं तुम्हारा धर्म क्या है, मुझे ये जानने की इच्छा नहीं। तुम्हारी राय क्या है, इसे भी जानने की इच्छा नहीं। केवल तुम्हारे दुख क्या है, यह जानने की इच्छा रखता हूं। उसे दूर करने में तुम्हारी मदद करने की इच्छा रखता हूं। ऐसा काम करने वाले मानवीय कर्तव्य को पूरा करते हैं। मेरा भी प्रयास ऐसा ही है।

0: विनोबा जी स्वयं के बारे में कहते हैं,
1: मेरी भावना भी ऐसी ही है कि सब मेरे हैं और मैं सबका। एक पर अधिक प्रेम और दूसरे पर कम, यह भावना मेरे हृदय में नहीं। हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र में अबू बकर के संबंध में एक घटना का उल्लेख मिलता है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक व्यक्ति की अपेक्षा दूसरे व्यक्ति पर अधिक प्रेम करने की मनाही ना हो तो मैं उससे सबसे अधिक प्रेम करता। अर्थात ईश्वर की ओर एक व्यक्ति की अपेक्षा दूसरे व्यक्ति से अधिक प्रेम करने पर मनाही है। इस प्रकार की मनाही अगर नहीं होती तो अबू बकर से अधिक प्रेम किया होता। यही मेरा भी विचार है। मैं प्रेम करने में फर्क नहीं कर सकता।

0: मित्र के बारे में विनोबा जी मानते हैं कि उन्हें मित्र भाव के दर्शन होते रहते हैं। ये एक ऐसा भाव है जो उन्हें सदैव आकर्षित करता रहा। वे कहते हैं,
1: मुझे माँ के प्रति आदर है, पिता के प्रति आदर है और गुरु के प्रति तो अत्यंत आदर है। इतना सब होते हुए भी मैं सबका दोस्त ही हो सकता हूँ और सभी मेरे दोस्त। इन सबसे मैं मित्रवत बात करता हूँ और जब किसी पर प्रहार करता हूँ वह भी मित्रवत। इतना सब होते हुए भी मुझ में मृदुता है, वह भी इतनी मानो सारे संसार की मृदुता उसमें समाई हो।

0: यहां विनोबा जी कहते हैं,
1: मैंने कभी भी गुरुत्व का स्वीकार नहीं किया। एक दूसरे की सहायता करें और सभी को साथ ले चलें, यही मेरा स्वभाव है। शायद यही बात है कि मुझे गुरु की कल्पना कभी पसंद नहीं आई। मैं गुरु के महत्व को मानता हूं। गुरु ऐसा भी हो सकता है जिसके केवल स्पर्श से, दर्शन से, वाणी से, इतना ही नहीं तो सिर्फ संकल्प मात्र से ही शिष्य का हो। ऐसे पूर्णात्मा गुरु हो सकता है, फिर भी मैं इसे कल्पना मात्र ही मानता हूं। प्रत्यक्ष में ऐसा कोई गुरु मुझे ज्ञात नहीं। गुरु ये सिर्फ दो अक्षर हैं जिनका मैं आदर करता हूं, परंतु जब कोई इन दो अक्षरों का प्रयोग मेरे संदर्भ में करना चाहता हो तो उसे मैं सह नहीं सकता।

0: एक बार हंगेरी से आए एक मेहमान ने सवाल किया कि आपके काम को कौन आगे बढ़ाएगा, अगर आपका कोई शिष्य बनेगा तो अच्छा होगा। विनोबा जी ने जवाब में कहा,
1: जिसने मुझे कार्य करने की प्रेरणा दी वही मेरे कार्य को आगे बढ़ाएगा। मैं कार्य करने वाला हूँ ऐसी मेरी भावना भी नहीं, और किसी को हुक्म देना, किसी पर अपना अनुशासन चलाना यह मेरा स्वभाव नहीं। ऐसी स्थिति में जिस शक्ति ने मुझे कार्य करने की प्रेरणा दी वही शक्ति इसे आगे भी बढ़ाएगी, इसलिए मेरा कोई शिष्य हो ऐसा मैं नहीं चाहता। और वैसे भी मेरे साथ सभी महापुरुषों के आशीर्वाद हैं, यह मेरे चारों ओर हैं जो मुझे सूर्य की रश्मियों की भांति स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान की प्रखर एक चिंगारी के समक्ष विश्व की सारी कठिनाई भस्म होनी चाहिए। इस विश्वास के आधार पर सतत ज्ञानोपासना करना तथा दृष्ट ज्ञान का प्रसार करने में ही मेरा आज तक जीवन सार्थक हुआ है। उसके स्पर्श से अगर दो चार जीवन भी सफल हुए तो मेरा ध्येय साकार होगा। मैं जब भी कुछ करने के लिए कदम उठाता हूँ तो उसकी जड़ तक पहुंचे बिना नहीं रहता। मैंने अपने जीवन के 30 साल एकांत चिंतन में बिताए हैं, और इस दरमियान जो सेवा मुझसे हो सकी वो भी मैं करता रहा, क्योंकि मैं अपने जीवन को सेवामय बनाना चाहता था। यही वजह थी कि मैं निरंतर चिंतनशील ही रहा। समाज परिवर्तन के लिए जो मूलभूत खोज थी ये उसका चिंतन था। मूलभूत विचारों के विषय में अब मैं निश्चिंत हूं। कोई भी सवाल मुझे अब डराता नहीं। कोई भी सवाल कितना भी जटिल क्यों ना हो, उलझा क्यों ना हो, मेरे सामने वो छोटा होकर ही आता है। मैं उस प्रश्न से बड़ा हो जाता हूं। सवाल जटिल क्यों ना हो परंतु है तो वह मानवीय, बुद्धि से उसे हल किया जा सकता है, और यही वजह है कि मेरी श्रद्धा डगमगाई नहीं। वो चाहे आश्रम हो या बाहर, मैंने जहां भी काम किया वहां उस समय हमारे सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन के सभी प्रकार के प्रश्नों का निराकरण अहिंसा से कैसे होगा, इसकी खोज करना, यह मुख्य विचार मेरे समक्ष था। और उसके लिए मैं तेलंगाना गया। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो इसका अर्थ यही होता कि अहिंसा का और शांति सेवा का कार्य करने के लिए ली गई प्रतिज्ञा छोड़ दी। ऐसा होता स्वराज प्राप्ति के बाद इस देश में घटनाएं घटित हुई, उसने अहिंसा की आशा को क्षीण कर दिया था। बहुत बड़ी हिंसा की शक्ति हिंदुस्तान में प्रकट हो गई थी, इसलिए गांधी जी की मृत्यु के बाद अहिंसा की सामूहिक प्रतिष्ठा कैसे निर्मित हो, मैं इसकी खोज में था। मेरा मानसिक झुकाव भगवान महावीर की पद्धतियों की ओर अधिक है, परंतु मैंने जो कार्य किए वो भगवान बुद्ध की पद्धतियों से। भगवान महावीर की पद्धति में किस समस्या को हाथ में लिया जाए या किस विचार को प्रसारित करना है यह उनकी दृष्टि नहीं थी, अपितु वे जहां जाते वहां व्यक्ति से बात करते, उसके विचारों को जानते तथा उसे समाधान प्राप्त हो ऐसा मार्ग बताते। जिस व्यक्ति की श्रद्धा जिस ग्रंथ पर हो उसका ही आधार लेकर उन्हें समझाते, और अगर श्रद्धा ना हो तो ग्रंथ का आधार लिए बिना भी उनको मार्गदर्शन करते। इस प्रकार अहिंसा का विचार केंद्र में रखकर इस कार्य को करते, मगर भगवान बुद्ध ने अहिंसा विचार के प्रसार हेतु सामाजिक समस्याओं को लिया था। संकल्प लेना या ना लेना ये अलग बात है, परंतु जिस संकल्प का अर्थ स्थूल हो गया हो, जिस सूक्ष्म वस्तु के प्रकाशन हेतु संकल्प लिया है वह अगर गौण हो गई हो और संकल्प बलवान, जिन विचारों के लिए संकल्प लिया गया है वह विचार ही छुप जाए तो धोखा निर्माण होता है। संकल्प नहीं होगा तो विचार बिखरने लगते हैं। सद्भावना अव्यक्त रूप से फैलती है किंतु विचार अव्यक्त रूप से आकार नहीं लेते। सामान्य जनता को उसका आकर्षण नहीं होता है। इस प्रकार संकल्प लेने में एक धोखा है तो संकल्प न स्वीकारने में दूसरा, संकल्प स्वीकारने में एक गुण है और ना स्वीकारने में दूसरा गुण। मैंने जमीन के प्रश्नों का संकल्प स्वीकारा है, परंतु साम्य योग का, करुणा का विचार समझाना, यही मेरी मूल दृष्टि है। संकल्प स्वीकार करने के लिए मैंने बुद्धि का परिपालन किया, परंतु मेरा मन हमेशा संकल्प से परे जाकर विचार करता है और अपने मूल स्वरूप में रहे ऐसी इच्छा मुझे हमेशा ही होती है, फिर भी मैं संकल्प नहीं छोड़ता। इस प्रकार मेरी पद्धतियों में दो पद्धतियों का समन्वय है।

0: विनोबा जी कहते हैं,
1: मेरा एक गुण है, उसे गुण कहें या दोष कहें, दोनों ही माने जा सकते हैं। वो ये कि मैं कभी किसी को आग्रहपूर्ण कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करता। परिणाम, काम की पूर्णता में देरी होती है, वो तो होता ही है, पर खराब नहीं होता है। इतना ही नहीं, मैं जो कुछ भी काम बताता हूं उसका दबाव किसी पर आने नहीं देता। मेरे पास श्रेष्ठ विचार है पर उनका किसी पर दबाव न बने, ये श्रेष्ठ विचार है। मेरे विचारों से अगर सामने वाला सहमत तो आनंद, और अगर असहमत हो उस पर अमल नहीं किया तो भी आनंद। मेरे विचारों से असहमत होकर किसी दबाव में आकर कोई मेरे उन विचारों को अगर मानता है तो मुझे बड़ा दुख होगा। परंतु विचारों से सहमत होने पर आज नहीं तो कल उन विचारों पर अमल करेगा, ऐसी आशा रखता हूं। मैं किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करता, यही वजह है कि मैं किसी पर विचार थोपना नहीं चाहता। सत्ता सेवा को समाप्त करने वाली है, अतः मैं सत्ता का दुश्मन हूं। मुझ पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। कई बार गलत फहमियों की वजह से मुझ पर जो आरोप लगते रहे उनका मेरे मन पर कभी असर नहीं हुआ। वजह, ईश्वर जैसा नचाएगा वैसा मैं करता हूं, यह काम उसका है। वो मुझे घुमा रहा है इसलिए मैं घूम रहा हूं, इससे ज्यादा प्रचार की चिंता नहीं करता। प्रकाश के प्रचार की भांति विचारों का फैलाव भी आकाश से होता है, जिसे आकाश भी नहीं रोक सकता। यही वजह है कि विचारों पर मेरी श्रद्धा है और निर्भयता से काम कर रहा हूं। मैं पुण्य का नहीं, सेवा का अभिलाषी हूं। मैं केवल सेवा के लिए उत्सुक हूं, वो सेवा का श्रेय भी मेरे हिस्से आए ऐसा मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये सेवा तो सहज प्राप्त आज की परिस्थिति एवं समय की आवश्यकता अनुसार है। मुझसे जो सेवा हुई वह समय की मांग है और वो समय ने मुझसे करवा ली, इसका श्रेय नहीं मुझे मिलेगा। एक छोटी लकड़ी अगर गंगोत्री में गंगा नदी में गिरती है और वो 1,500 मील प्रवाह के साथ बहते बहते अंत में सागर में गिरती है तो तैरने का श्रेय उसे नहीं मिलेगा। वह तो प्रवाह के साथ थी, अगर वह प्रवाह के विपरीत थोड़ा भी तैरती तो शायद तैरने का श्रेय उसे मिल जाता, किंतु 1,500 मील का सफर तय करने के बाद भी तैरने का श्रेय उसे नहीं मिला। उसी प्रकार मैंने जिस सेवा का व्रत लिया है वह अगर प्रवाह के विरुद्ध होती तो शायद उसका श्रेय मुझे मिलता, परंतु यह सेवा प्रवाह के साथ है, समय की मांग है, अतः वह सेवा भले ही मेरे हाथों से हो रही हो किंतु वह मेरे नाम से जमा नहीं होगी, ऐसा बंदोबस्त मैंने कर रखा है। मैं जो उद्देश्य लेकर चला उसे पूर्ण करने की जवाबदारी सिर्फ मेरी है, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। तो उसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि यह कार्य ईश्वर का है, वो होगा ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सत्य का विरोध कोई नहीं कर सकता, सत्य ग्रहण करने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, परंतु सत्य को कोई टाल नहीं सकता। सत्य का विरोध करने वाली शक्ति संसार में